जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। अब हमारी आज की सभा शुरू होती है। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आइए मिलकर अपने दिन की शुरुआत करें आजाद हिंद गान के साथ।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इसी बात के साथ कि जीवन में हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। वक्त कितना भी कठिन या हमारी परीक्षा लेने वाला क्यों ना हो, कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। आपकी सफलता के लिए आपकी अपनी दृढ़ इच्छा से मजबूत या जरूरी और कुछ नहीं। जी हां, इच्छा से अधिक महत्वपूर्ण दूसरी कोई बात या चीज नहीं होती। अगर आपको जीवन में सफल होना है, कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, धरोहर है। क्योंकि अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल नहीं सकते तो धीरे धीरे ही सही लेकिन रेंगते हुए आगे बढ़ो। कभी भी लेकिन रुकना नहीं है।

उम्मीद कोई कमजोरी नहीं होती, कठिन परिस्थिति में उम्मीद बनाए रखना भी एक अनुशासन है। गुड मॉर्निंग, सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो पर आपका फिर से स्वागत करता हूं, मैं हूं वास्तु कृष्णा। परिस्थितियों में सक्रिय रूप से बनाए रखने की बात बार बार आती है, यानी उम्मीद आपकी सबसे बड़ी ताकत भी होती है दोस्तों। कई बार परिस्थितियों में इंसान फंस जाता है और बिल्कुल कोई रास्ता सामने नजर नहीं आता, लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में एक ही मात्र चीज होती है इंसान के पास, वो होती है उम्मीद। कहते हैं उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िएगा। जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब बिल्कुल आप असफल हो गए ऐसा फील भी हो जाए ना, तब भी उम्मीद मत छोड़िए, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। देखिए, जब किसी इंसान का वक्त अच्छा चल रहा होता है तब उसे कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती, समस्याएं भी अपना भी खत्म होती चली जाती हैं। जिसका टाइम ही मुश्किल से गुजर रहा होता है, टफ टाइम चल रहा होता है जिंदगी का, उसको हर चीज बड़ी संभाल कर और संजो कर रखनी होती है। सफलता अगर इतनी आसानी से मिलने वाली चीज होती तो हर कोई सफल हो जाता। इसके लिए हमें पे करना होता है, भुगतान जरूर करना होता है, इन विपरीत परिस्थितियों से लड़कर झगड़कर ही आगे बढ़ना है। और ऐसे में कई बार आप अकेला भी हो जाएंगे, आपको लगेगा कि अब कोई साथ नहीं दे रहा है, लगेगा कि वक्त ही उल्टा चल रहा है, लोग बिल्कुल छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी ताकत हमारी उम्मीद ही बनती है कि नहीं, मैं कर सकता या कर सकती हूं। उम्मीद का दामन कभी ना छोड़िएगा।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
6: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
5: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
7: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
8: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

कई बार हम दूसरों को देखकर भी थोड़े से हतोत्साहित हो जाते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कई बार अपने संगी साथियों, यार दोस्तों या रिश्तेदारों को देखकर, उनकी स्पीड को देखकर, उनकी कामयाबी को देखकर भी मन में भाव आ जाता है कि हम कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में। गुड मॉर्निंग, सुबह भारतीय आजादी रेडियो सुन रहे हैं आप, मैं हूं वास्तु कृष्णा। दूसरों की गति से अपनी जिंदगी को मत नापो। किसी की उपलब्धि आपकी असफलता का प्रमाण नहीं है। उन्होंने मेहनत की थी तो सफल हो गए, बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होता। दूसरे लोगों को लगता है कि बिना कुछ करे उसको मिल गया, जबकि ये सच नहीं। दुनिया सिर्फ सफलता देखती है, स्ट्रगल नहीं देखती, संघर्ष नहीं देखती है। हमें लगता है कोई रातों रात बड़ा बन गया, हमें लगता है कोई रातों रात चमत्कार हो गया। चमत्कार नहीं होते दोस्तों, करने पड़ते हैं। हमने किसी का संघर्ष नहीं देखा तो किसी दूसरे की स्पीड, किसी दूसरे की कामयाबी को देखकर, उसकी सफलताओं को देखकर आप ये मत सोचिए कि आप असफल हो गए हैं। आपकी अपनी जर्नी है, आपका अपना जीवन है, अपना संघर्ष है आपका। अपने तरीके से इसको जारी रखो, आगे बढ़ो, क्योंकि दूसरों के हिसाब से थोड़ी ना आपकी जिंदगी की सफलता या असफलता को आप नापेंगे। ये आपका अधिकार है, आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बस याद रखिएगा, धैर्य हमेशा रखना, धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। धैर्य को धारण करना दोस्तों।

जब कुछ भी नजर ना आ रहा हो तब भी हमको अगला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, सुभारती आजादी रेडियो पर आपका स्वागत करता हूँ। जब रास्ता साफ ना दिखाई दे तब अगला सही कदम उठाइए, पूरा रास्ता नहीं भी दिखाई दे तब भी जरूरी है आपका आगे बढ़ना, रुकना नहीं है दोस्तों। जब बिल्कुल लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता तब भी सोच समझ कर एक और कदम आपको उठाना ही होगा। बड़ी अनिश्चितता में यही सबसे व्यवहारिक रणनीति बनती है। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तब भी एक सही कदम आपको सोच समझ कर उठाना होगा।

आपके साथ क्या हुआ ये हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होगा, उसके बाद आप क्या करते हो यही सबसे जरूरी है और वही आपकी भूमिका भी है। मैं हूं वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो। देखिए आपके साथ क्या होता है, कई बार परिस्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं होगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति के बाद किसी भी सिचुएशन में आप क्या करते हैं ये हमेशा आपके हाथ में होगा। बड़ा लक्ष्य डराए तो लक्ष्य मत छोड़ना, उसे आज के छोटे काम में आपको बदलना होगा। आपका टारगेट बड़ा है, सपना बड़ा है और डराएगा वो, कई बार लगेगा आप अकेले हैं नहीं कर पाएंगे, लेकिन छोटे छोटे से कदमों में बदलना होगा हमको कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदलनी होगी। सपना मत छोड़िए, स्ट्रैटेजी को बदल दीजिए। देश काल और परिस्थिति के अनुसार ही जो इंसान रिएक्ट करना सीख जाता है उसे फिर कोई रोक नहीं सकता।

नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जय हिंद वंदे मातरम सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। आप सुन रहे हैं, मैं हूं वास्तु कृष्णा और यह है कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई वस्तु कृष्णा के साथ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।
1: जी हाँ, यह है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। सेहत सही लाभ कई में आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की। ये नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से चुलबुले बच्चे, ये क्यूटी पाई आपके, जिन्हें आप कभी लड्डू कहते हैं, कभी गोपाल कहते हैं, तो कभी चीकू भी कहकर पुकारते होंगे, है ना। उस नन्ही सी जिंदगी की जो जन्म लेते ही हमारी पूरी दुनिया बदल लेता है, उसी की बात करेंगे आज हम। दोस्तों, एक बच्चा जब पैदा होता है तो परिवार में खुशियां आती हैं, लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी शुरू होती है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि बच्चा कितना बड़ा हो रहा है, सवाल यह है क्या बच्चा स्वस्थ बढ़ रहा है, क्या उसका दिमाग सही तरीके से विकसित हो पा रहा है, क्या उसे पर्याप्त पोषण मिल पा रहा है, क्या उसकी आंखें और कान ठीक हैं, क्या उसका शरीर मजबूत हो रहा है, क्या वो अपनी उम्र के हिसाब से सीख और समझ रहा है, और क्या उसकी मां भी स्वस्थ है। क्योंकि याद रखिए, स्वस्थ बच्चा बनाने की शुरुआत मां के स्वास्थ्य से होती है। तो आइए आज जन्म से लेकर लगभग 10 साल की उम्र तक के बच्चे के स्वास्थ्य की पूरी यात्रा को आसान भाषा में समझते हैं सेहत सही लाभ कई में।
2: सेहत सही

वेलकम आपका एक बार फिर से सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और यह है सेहत सही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति। दोस्तों, क्या बच्चा स्वस्थ बढ़ रहा है? क्या उसका दिमाग सही तरीके से विकसित हो पा रहा है? पोषण मिल रहा है? आंख, कान, पैर, हाथ सब ठीक है, मजबूत है? क्या अपनी उम्र के हिसाब से बच्चा सीख रहा है, समझ रहा है? ये सब जिम्मेदारियां एक पूरे परिवार की होती है, ठीक समय पर पता करना। साथ ही साथ ये भी कि उसकी माँ भी क्या स्वस्थ है भी या नहीं। बच्चे के जन्म के समय की बात करते हैं। सबसे पहले जन्म के तुरंत बाद के जो टाइम होते हैं, जो दिन होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नवजात बच्चे को जन्म के बाद गर्म रखना, माँ और बच्चे का जो त्वचा से त्वचा का संपर्क है वो बनाना, जल्दी स्तनपान शुरू कराना, संक्रमण से बचाव और बच्चे की सांस और सामान्य स्थिति पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है। WHO नवजात की आवश्यक देखभाल में इन बातों को महत्वपूर्ण मानता है। इसीलिए बच्चे के जन्म के बाद केवल घर ले आना ही पर्याप्त नहीं होता, माँ और बच्चे दोनों की प्रसव के बाद जांच और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। फॉलोअप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात आती है माँ के दूध की। दोस्तों, बच्चे के जीवन के शुरुआती महीनों में माँ का दूध उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोषण होता है। WHO और यूनिसेफ की सिफारिश है कि बच्चे को जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराया जाए और पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। 6 महीने के बाद सुरक्षित और पर्याप्त पूरक आहार शुरू किया जा सकता है और स्तनपान 2 साल या उससे अधिक समय तक जारी रखा जा सकता है। इसीलिए नवजात को बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना आवश्यक जांच पड़ताल के पानी, शहद या दूसरी चीजें मत चटाइए। इस तरह की परंपराओं से बचना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चा घर पर पहली बार आता है तो मोहल्ले के कुछ लोग आकर ऐसी बातें बता देते हैं कि बच्चे को ये चटा दो, वो खिला दो। ऐसे चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, डॉक्टर की ही सलाह माननी चाहिए। और हाँ, अगर माँ को स्तनपान कराने में परेशानी हो रही है, बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पा रहा है या बच्चा बार बार उल्टी करता है, तो स्वास्थ्य कर्मी से या अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले। अब बात करेंगे हम माँ की। हम अक्सर बच्चे की चिंता में माँ को भूल बैठते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद माँ के शरीर को आराम भी चाहिए, पौष्टिक भोजन भी, पर्याप्त पानी, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। माँ को लगातार अत्यधिक कमजोरी हो, बहुत ज्यादा रक्त स्राव हो, तेज बुखार हो, सांस लेने में परेशानी हो, बहुत तेज सिर दर्द या दूसरी कोई गंभीर समस्या नजर आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और एक बात बहुत ज्यादा जरूरी, माँ का मानसिक स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य का हिस्सा होता है। दोस्तों, बच्चे के जन्म के बाद थकान और भावनात्मक बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अगर माँ लंबे समय तक बहुत उदास रहे, किसी काम में मन न लगे, अत्यधिक चिंता रहे या खुद को या बच्चे को नुकसान पहुंचाने जैसे विचार आए, तो इसे छिपाना नहीं चाहिए। परिवार को उसका साथ देना चाहिए और स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। WHO भी प्रसव के बाद माँ और परिवार को जानकारी, सहयोग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता देने के महत्व पर जोर देता है। अब ये जिम्मेदारी परिवार की भी बनती है कि जन्म के बाद सिर्फ बच्चे के चक्कर में नहीं लगे रहना, उसकी माँ का भी विशेष ध्यान रखना। मानसिक बदलाव भी होंगे, है ना, स्ट्रेस भी हो सकता है एक माँ को, तनाव भी हो सकता है, कई बीमारियां भी घर कर सकती हैं, तो माँ का भी उतना ही ध्यान रखना जितना बच्चे का रखना है।

0: सुन रहे हैं सेहत सही लाभकारी वस्तु कृष्णा के साथ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।
1: जी हाँ, सेहत सही लाभकारी में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। यह है मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। हम बात कर रहे हैं एक बच्चे के जन्म से लेकर तकरीबन 9-10 साल

की उम्र होने तक उसका ध्यान किस प्रकार रखें, और बच्चे का ध्यान रखने के साथ साथ सबसे जरूरी हो जाता है माँ के सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये तो आपको पता ही होता है। अब नवजात बच्चे में किन किन बातों पर नजर हमको रखनी है इसकी बात करते हैं। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा, बहुत ज्यादा सुस्त है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, बहुत तेज या असामान्य सांसें चल रही हैं, शरीर बहुत ठंडा या बहुत गर्म लग रहा है, बार बार उल्टी हो रही है, दौरे पड़ रहे हैं, या बच्चे का रंग असामान्य रूप से पीला या नीला दिखाई दे रहा है, तो इंतजार मत कीजिए। नवजात बच्चे में बीमारी तेजी से गंभीर हो सकती है, ऐसे संकेतों में तुरंत स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर के पास जाकर संपर्क जरूर करना चाहिए। अब बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तब क्या करना है? दोस्तों, अब शुरू होती है एक नई यात्रा। 6 महीने के बाद सिर्फ दूध बच्चे की बढ़ती जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं रहता। 6 महीने के बाद इसीलिए उम्र के अनुसार पूरक आहार शुरू करना चाहिए, जैसे कि स्तनपान तो जारी रखना ही है, बच्चे के खाने पीने में धीरे धीरे अलग अलग पौष्टिक चीजें शामिल कीजिए। दाल, खिचड़ी, सब्जियां, फल, हल्के फुल्के अनाज, अंडा, दूध या अन्य उपलब्ध जो भी आपके परिवार में चलता है पौष्टिक खाद्य पदार्थ, और परिवार की जो स्थानीय या पौष्टिक चीजें होती है, ऐसा होता ना कि हर किसी के परिवार में अलग खान पान चलता है या हर स्थान पर हर जगहों पर अलग अलग चीजें होती हैं। ध्यान रखिए, परिवार में एक तरह का भोजन बनता है, लेकिन एक परिवार में नवजात बच्चा भी है, नौजवान भी है, बूढ़े भी है, सबका भोजन एक नहीं हो सकता। बड़े बुजुर्गों की पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं रहती, उनका भोजन अलग होना चाहिए, नौजवानों का अलग होना चाहिए, किशोरों का अलग होना चाहिए, और नवजात शिशुओं का, बच्चों का अलग भोजन होना ही चाहिए। यह नहीं है कि आज आपने अपने घर में कुछ बना दिया तो बच्चे को भी, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को भी वही चटाते रहे, जी नहीं। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है कि छोटे नवजात बच्चों को आपको क्या खिलाना है। उसके शरीर और दिमाग के विकास के लिए पोषण देना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवार की स्थानीय जो भी चीजें हैं, पौष्टिक चीजें हैं जो आप खाते हैं अपने घरों में, वो खिलाएं, उसी में से ढूंढ लें कि बच्चे के लिए क्या जरूरी है। बच्चे को सिर्फ पेट भरने के लिए खाना नहीं देना है, उसका पोषण का ध्यान रखना है। अब आती है एनीमिया यानी खून की कमी की बात। बच्चों में आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। बच्चा जल्दी थक जाए, कमजोर दिखाई दे, खेलने में रुचि न दिखाए, उसकी त्वचा या आंखों के अंदर का हिस्सा ज्यादा पीला दिखाई दे, या उसका विकास अपेक्षित गति से न हो रहा हो, तो स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। याद रखिए दोस्तों, बिना जांच या डॉक्टर की सलाह के बच्चे को आयरन की दवा खुद से नहीं देनी है। जरूरत के अनुसार डॉक्टर जांच और उपचार तय करेंगे, उसके बाद ही कोई दवाई खिलाई जाएगी। अब बात सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की भी है। दोस्तों, बच्चे का स्वस्थ विकास केवल वजन बढ़ने का नहीं होता है। बच्चा कब बैठता है, कब चलता है, कब बोलना शुरू करता है, अपनी बात कैसे समझाता है, दूसरों से कैसे जुड़ता है, कैसे खेलता है, कैसे चीजों को समझता है, ये सब उसके विकास का हिस्सा है। हर बच्चे के विकास की गति थोड़ी अलग होती है, इसीलिए कंपेयर मत कीजिएगा कि फला बच्चा तो, उनका बच्चा तो बहुत जल्दी बोलना शुरू हो गया, बहुत जल्दी खड़ा होना शुरू हो गया, या वो ऐसे करता है वैसे करता है। हर बच्चा बिल्कुल अलग है, तो किसी से कंपेयर मत कीजिए। लेकिन अगर बच्चा अपनी उम्र के अनुसार लगातार पीछे ही खिसक रहा हो या पहले से आती कोई क्षमता खो रहा हो, तो उसे इस बात को नजरअंदाज नहीं करना है। समय पर जांच और शुरुआती सहायता बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। WHO के अनुसार शुरुआती वर्षों में बच्चे को अच्छा पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षित वातावरण, प्यार, देखभाल और सीखने के अवसर मिलना उसके विकास की बुनियाद होते हैं। इसीलिए बच्चे को सिर्फ मोबाइल पकड़ा देना सीखना नहीं होता दोस्तों, उससे बात कीजिए, उसकी कहानी सुनिए, वो बहुत कुछ आपको बताना चाहता है, वो सब सुनिए, उसकी बातों को सुनिए और फिर उसे कुछ कहानियां सुनाइए, उसे अपनी बातें बताइए, उसके साथ बातें कीजिए, उसके सवालों का जवाब दीजिए, उसके साथ खेलिए, उसके साथ चित्र भी बनाइए, अगर वो कोई मस्ती करता है तो अपने बच्चों के साथ मस्ती भी कीजिए, गाने उसको सुनाइए, कविता सुनाइए, लोरी सुनाइए, और हाँ, अगर वो कुछ आपको सुनाना चाहता है तो सुनिए भी, और उसे सुरक्षित वातावरण में चीजें खोजने और सीखने का मौका दीजिए। बच्चे का दिमाग सिर्फ किताबों से नहीं, बातचीत और अनुभव से भी विकसित होता है। अब 2 से 5 साल की उम्र जब बच्चे की हो जाती है, इस उम्र में बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं।
इस समय पोषण के साथ साथ नींद, शारीरिक गतिविधि, खेल, भाषा और सामाजिक व्यवहार पर भी ध्यान देना शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा किसी

0: इसकी जिद कर रहा है तो आपने उसको मोबाइल पकड़ा दिया, सारा दिन वो मोबाइल ही देखता रहे, ये जितने कार्टून और जो बच्चों की वीडियोस होती है वही देखता रहे, उससे दूर रखना है। बच्चे को खेलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, अगर जरूरत पड़े आप खुद उसके साथ खेलिए, उसके खेलने के सामान लेकर आइए, बहुत ज्यादा मोबाइल मत देखने दीजिए, बच्चे को हर समय मोबाइल या टीवी के सामने मत बैठने दीजिए, इसके बजाय उसे उसके साथ खेलिए, उसके साथ बातचीत कीजिए, उसको कहानियां सुनाइए, परिवार के साथ खेलने का मौका दीजिए, दूसरे बच्चों को साथ खेलने का मौका दीजिए, हाथ धोने की आदत डालिए, साफ पानी पिलाने की आदत डालिए, साफ और सुरक्षित खाना कैसे खाना है ये उसको बताइए, शौचालय कैसे यूज करना है, हाथों को कैसे धोना है ये सब उसको सिखाइए, और हाँ टीकाकरण का रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रखिए, टीके की कोई खुराक छूट तो नहीं गई है, स्वास्थ्यकर्मी से पूछकर आगे की पूरी योजना तय करिए।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई वस्तु कृष्णा के साथ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।

प्रस्तुति। जी हाँ, यह सेहत से ही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज हमने बात की है यहाँ पर कि अपने नवजात बच्चों का ध्यान कैसे रखना चाहिए, तकरीबन पैदा होने से लेकर 9-10 साल की उम्र तक कैसे कैसे हमको अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके भी कोई विचार है तो हमारा नंबर है 9639012111 पर, इस पर अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके कुछ भेज सकते हैं, हमें बता सकते हैं। ये खास प्रस्तुति है स्मार्ट एनजीओ की।

ऐसे ही प्यार से, जैसे ये गाना भी आपने सुना, ऐसे ही प्यार से अपने बच्चों से बात कीजिए। दोस्तों हमने बात की पैदा होने से लेकर तकरीबन 5 साल तक हमारे बच्चों के साथ हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। अब बात करते हैं 5 साल से 10 साल तक के बच्चों का ध्यान कैसे हमको रखना है। दोस्तों ये वो उम्र है जब माता पिता को सिर्फ पढ़ाई के नंबर नहीं देखने चाहिए। बच्चा स्कूल में कैसा महसूस करता है, उसकी नजर साफ है या नहीं, उसे सुनने में कोई परेशानी तो नहीं, वो बार बार सिर दर्द की शिकायत तो नहीं करता, अपनी क्लास में ध्यान लगाने में लगातार कठिनाई तो नहीं हो रही, बच्चा बहुत जल्दी थक तो नहीं जा रहा, बार बार बीमार तो नहीं पड़ता, उसका वजन और लंबाई उसकी उम्र के अनुसार लगातार बढ़ रहे हैं या नहीं, और सबसे जरूरी क्या बच्चा खुश है। अगर बच्चा लगातार चुप रहता है, डरता है, स्कूल जाने से बचता है, अचानक पढ़ाई में गिरावट आती है, व्यवहार में बड़ा बदलाव दिखाई देता है, तो केवल डांटने के बजाय उससे बात कीजिए और जरूरत पड़ने पर उसके टीचर से या डॉक्टर से भी मदद लीजिए। और सबसे खास बात दोस्तों हमारी बेटियों के बारे में, बेटा हो या बेटी वैसे बात बराबर होती है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बेटियां थोड़ी नाजुक होती है, मतलब वो थोड़ी कोमल स्वभाव की होती है, वो जल्दी डर जाती है, उन्हें कम डांटिए। बेटियां बड़ी कोमल होती है तो उनको समझाइए, प्यार से बात कीजिए और उससे बात करेंगे जितना ज्यादा उसके स्कूल में क्या हुआ, उसके दोस्त या सहेलियां कौन है, क्या उसकी पढ़ाई में चल रहा है, खास तौर से हमारी बच्चियां अपने मोबाइल में क्या देख रही है ये पिता को पता होना चाहिए। पता तो लड़कों का भी होना चाहिए, दोनों का ही बराबर मात्रा में ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा अगर एफर्ट आपको करने पड़े तो कीजिए, बच्चों से पीछा छुड़ाने की कोशिश मत कीजिए कि बच्चे को स्कूल भेज दिया आप छुट्टी, ऐसा नहीं। बच्चा जब गाड़ी से उतरे ना, स्कूल से वापस आए, तुरंत उसके गले मिलिए, उसको ये एहसास कराइए कि आप उसका इंतजार कर रहे थे, घर पर उसका इंतजार होता है, उसको बहुत ज्यादा कंफर्ट फील कराइए। उसके स्कूल में क्या हुआ, क्या बातें हुई, ये सब उसके साथ बातें कीजिए, उसके दोस्तों ने क्या कहा, टीचर्स ने क्या कहा, बच्चे को वो अपनापन दीजिए कि उसको लगे कि हाँ उसके माँ बाप ही उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो चलिए अगर आप ऐसा करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो अपने बच्चों के दोस्त बन जाइए। आज से ही एक अच्छे नौजवान बच्चे के किशोर अवस्था में पहुंचने तक माँ बाप को अपने बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उनके अच्छे खान पान का ध्यान रखना चाहिए, उनकी मित्र मंडली कैसी है ये ध्यान रखना चाहिए, उनको क्या खेल कूद पसंद है वो ध्यान रखना चाहिए, उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में जा रहा है ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप माँ बाप है, आपको सब कुछ पहले से ही पता है। ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई वस्तु कृष्णा के साथ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार जूनियर सनी देओल टीवी आर्टिस्ट। और दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं आजाद हिंद रेडियो FM सुभारती मेरठ। दोस्तों, मुझे यहां कर पता चला कि टीवी की जो बीमारी है उसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं, कुछ जानकारी देना चाहता हूं आज इस विषय में कि टीवी एक बहुत ही घातक बीमारी है, बहुत ही भयंकर बीमारी है, लेकिन इसका भी इलाज है। हमारे शहर में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उन अस्पताल में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपको फ्री दवाई भी मिलेगी, आपको फाइनेंशियली हेल्प भी होगी, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो मैं चाहता हूं कि टीवी की बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं रही, क्योंकि इसके लिए सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। तो आप लोग सरकारी अस्पताल जाएं और इस बीमारी से लड़ें, छुटकारा पाएं, क्योंकि आपको सारी सुविधाएं फ्री मिलेंगी। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग किसी को भी टीवी की समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप इसका इलाज फ्री करा सकते हैं सरकारी अस्पताल में। आजाद हिंद रेडियो सुभारती FM मेरठ। धन्यवाद।
1: अरे स्मार्ट NGO प्रस्तुत करता है।

ये एंटिटी है। तो अगर आप लोग यहाँ टॉप में लेफ्ट में देखेंगे तो ये इसके कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। तीसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जहां पे ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो गड़बड़ आइटम होता है, जहां पे इन्फेक्शन होता है उसके आइटम वहां से गुजरते हैं, वहीं पे जाके ये वर्म रहता है। राइट में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये मैनिफेस्टेशन है, यानी कि दिखाई कैसे पड़ता है शरीर में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, बट वी विल बी एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। जिनमें सिम्टम आते हैं उनमें दो तरह की कंडीशन होती है, वन इज एक्यूट यानी कि छोटे समय में सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ गए, क्रॉनिक यानी कि बहुत देर बाद सिम्टम आए और जो देर तक टिकेंगे। एक्यूट में क्या होता है, देर इज फीवर और फीवर के बाद लिम्फेटिक चैनल्स में सूजन आ जाती है, दर्द होता है बहुत तेज, और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जो क्रॉनिक है उसमें लिम्फेडिमा एक होता है, लिम्फेडिमा एसेंशियली कहाँ होता है, तो लिम्फेटिक चैनल्स में जहां ये एडल्ट पैरासाइट रहते हैं वहां पे लिम्फेटिक चैनल ब्लॉकेज होता है और थोड़ा सा खुल जाता है। चैनल्स खुलने से क्या होता है, फ्लूइड हमारा बाहर आ जाता है और वो धीरे धीरे सूजन पैदा करता है। इट कैन बी योर लिम्स, इट कैन बी आर्म, इट कैन बी लेग। और अगर ये हमारा पुरुषों में जो जननांग होते हैं, स्क्रोटल एरिया होता है, वहां पे ये पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। ये महिलाओं में ब्रेस्ट में भी हो सकता है, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, वी कॉल इट एलिफेंटियासिस। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन और होती है, जिन लोगों की किडनी के लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, अगर मान लीजिए मुझे बीमारी है और मॉस्किटो इज बाइटिंग मी और वो मॉस्किटो फिर किसी और को बाइट करेगा, तब ये डिजीज उसको हो सकती है, अदरवाइज ये ट्रांसमिट नहीं होती। अब आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, राइट पे जो पिक्चर है इसमें जो लेफ्ट की दो पिक्चर है, ये लिम्फोडिमा है। कितना स्टिग्मा इस व्यक्ति को झेलना पड़ता होगा, जस्ट इमेजिन। और ये बीमारी प्रिवेंटेबल बीमारी है, इससे बचा जा सकता है, ये रीजन है आज हम लोग इस मीटिंग को कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा इस चीज को ध्यान से समझ लें कि फाइलेरिया की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है, और जिसको हो जाती है इस कंडीशन में उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। पर हमने आपको बता दिया है कि ये मच्छरों से फैलती है, तो इसीलिए इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। बस इतना आपको बता दें कि जब मच्छर किसी स्वस्थ इंसान को काटता है तो वो बच्चा माइक्रोफाइलेरिया बेबी उसके अंडर जाता है शरीर में, और वो एडल्ट बन जाता है, मेल एंड फीमेल। और वो मेल फीमेल जब एडल्ट हो जाते हैं, दे मैरी एंड दे प्रोड्यूस बेबीज। वो जो बेबीज होते हैं उनको हम माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। दिन के समय अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो ये माइक्रोफाइलेरिया उस सैंपल में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंटरनल लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे लंग्स के आसपास का सिस्टम है, वहां छुपा रहता है। ये केवल शाम के समय 8 बजे के बाद, मोस्टली मिडनाइट में, हमारे पेरिफेरल ब्लड में आता है। तो इसीलिए कुछ लोग गलती से ये कर लेते हैं कि दिन में गए ब्लड टेस्ट कराया, नेगेटिव आया। लेकिन जो गवर्नमेंट सिस्टम है, WHO का सिस्टम है, उसमें हम ये चाहते हैं कि लोग शाम को ब्लड टेस्ट कराएं, और इसको कहा जाता है नाइट ब्लड स्लाइड टेस्ट। कुछ जगहों पे आपने अखबार में पढ़ा होगा कि रात में ये रक्त सैंपल लिया जा रहा है और एक या उससे अधिक लोगों का ब्लड पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब वहां पे ये बीमारी बहुत फैली हुई है। और इसके लिए क्या करना है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवाएं बढ़ती हैं जिसको सभी लोगों को उसका सेवन करना होता है। इसमें आप देखेंगे जो हरा कलर दिखाई पड़ रहा है मैप में, चलाया जाएगा, उसकी सूची अर्चना जी आपको दे देंगी। मोस्ट प्रोबेबली आप उस जिले या उसके आसपास के जिले के होंगे, इसीलिए आपको इसमें इनवाइट किया गया है। उसे हम कहते हैं DA, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, और वो अपने क्षेत्र का पूरा प्लान बनाते हैं। जैसे आपको याद होगा पोलियो में एक माइक्रो प्लान बनता था, पोलियो में लोग घर घर जाके ड्रॉप दिया करते थे, लेकिन वहां पे केवल 5 साल के से नीचे के बच्चों को ही दिया जाता था। यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोग्राम में सभी लोगों को

हमें ट्रैक करना पड़ता है और सबको देना है दवा एक्सेप्ट 2 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं या कोई बहुत ज्यादा गंभीर बीमार हो। अदरवाइज एवरीबडी हैज टू बी कवर्ड। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, लेकिन इसके बारे में सबसे कम नॉलेज जनता को है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आप लोग प्लीज समझिए इस प्रोग्राम को और जितना हो सके इस प्रोग्राम में योगदान दीजिए। क्यों? क्योंकि साल में सिर्फ एक बार होता है और प्रोग्राम्स तो मान लीजिए कुछ महीनों में रिपीट भी होते हैं, पर साल में सिर्फ एक बार। तो जो व्यक्ति इन दवाओं का सेवन नहीं कर पाया उस समय, वो छूट जाएगा और वो अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। एंड द प्रॉब्लम हियर इज, भले ही उसके अंदर सिम्टम ना दिखाई पड़े, बट दैट पर्सन कैन बेसिकली स्प्रेड द डिजीज टू अदर इंडिविजुअल्स। क्योंकि अगर मेरे अंदर है वो माइक्रोफाइलेरिया, मैं हेल्दी दिख रहा हूं, बट इफ द मॉस्किटो बाइट्स मी एंड बाइट समबडी एल्स, तो वो वहां फैल जाए। तो इसमें आप लोग देखिए कैसे वर्कर जाते हैं घर पे, जो लोग घर पे नहीं होते हैं उनके लिए दवाएं नहीं बांटी जाती हैं। पहले क्या होता था, पहले प्रोग्राम में दवाएं बांटी जाती थी। गवर्नमेंट कैन ओनली प्रोवाइड द मेडिसिन, बट वी नीड टू कंज्यूम द मेडिसिन। हम तो यहां तक कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि ठीक है इस प्रोग्राम की दवाओं पे हमें विश्वास कम है, भले ही ये विदेश से आई हैं और अच्छी दवाएं हैं, कोई बात नहीं, आप जाइए प्राइवेट से खरीद लीजिए, सेम दवाएं अपने डोज के हिसाब से प्राइवेट से ले लीजिए, खा लीजिए, बट प्लीज कंज्यूम कीजिए। ये जो मैसेजिंग है हमें देनी पड़ेगी। सेकेंड, शहरी क्षेत्र में लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, एंड मेनी ऑफ देम फील कि हम क्यों खाएं, हम तो शहर में रहते हैं, हमारे आसपास तो कोई नहीं है, हम तो गुड नाइट कॉयल लगाते हैं, हमारे पास मच्छर काटेगा भी नहीं। बट दे फेल टू अंडरस्टैंड कि वो लोग कभी तो पार्क में निकलते होंगे, कभी तो मार्केट जाते होंगे, क्या वहां मच्छर नहीं काट सकता? और ये जो मच्छर काटता है, ये मच्छर क्यूलेक्स वेराइटी का होता है। मच्छर की फैमिली होती है, चार मुख्य प्रकार होते हैं, उसमें क्यूलेक्स, एडीज, एनोफिलीज, मंसोनिया होते हैं। लोग खाते नहीं थे, तो ये रीजन है लोगों ने दवाएं क्यों नहीं खाई थी। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब गवर्नमेंट ने ये नियम लगाया कि नहीं, आपको घर में दवा बांटनी नहीं है, सामने खिलानी है, तो ये प्रॉब्लम घट के केवल 27% रह गई। जो सेकेंड कैटेगरी है, अब्सेंट वाली, ये वो लोग हैं जब टीम हमारी घर पे गई है, पीपल वेर नॉट एट होम। तो ये समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हर कोई जाएगा अपने काम के लिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई काम नहीं करेगा। लेकिन ये लोग अगर काम करने से पहले अगर दवा खा लें, या काम करने के आने के बाद जाके आशा बहन से मिलके, या किसी भी हमारे मेडिकल जो गवर्नमेंट की पीएससी या सब सेंटर है वहां से खा लें, तो कम से कम वो पार्ट ले लेंगे और वो बच जाएंगे, खुद भी बचेंगे और डिजीज को ट्रांसमिट करने से भी बचेंगे। तीसरी कैटेगरी आप देखिए पर्पल में 18%, ये रिफ्यूजल वाले लोग। तो यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप ये बता सकते हैं कि देखिए आप जो नहीं खा रहे हैं, ये सिर्फ आप अपना घाटा नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप ये पूरे देश का घाटा कर रहे हैं, क्योंकि ये डिजीज एलिमिनेट करनी है भारत से, खत्म करनी है भारत से, और जो व्यक्ति इसमें दवा नहीं खाया उस इलाके का, वो बेसिकली ट्रांसमिट दोबारा कर सकता है उस इलाके। जैसे कोविड में क्या हुआ था, हर किसी को मास्क लगाने के लिए कहा गया, हम बचाव की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फाइलेरिया एक बार निम्फोडिमा हो गया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इंजेक्शन और टैबलेट या सर्जरी नहीं हो सकती जिससे हम पैर की सूजन कम कर सकें, हाइड्रोसिल केवल हम ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी और में नहीं कर सकते। उसमें अगर आप देखिए बाएं तरफ अनेमिया दिखाई पड़ रहा है, सेकेंड में आपको अंडरवेट यानी कुपोषण दिखाई पड़ रहा है, और नीचे सेंट्रिश की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि भारत में अनेमिया भी बहुत ज्यादा है, कुपोषण भी बहुत ज्यादा है। जो दवाएं दी जाती है इस मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें एल्बेंडाजोल होती है, डीईसी एक होती है, और एक तीसरी कुछ जगहों पे आइवरमेक्टिन होती है। तो जहां जहां एल्बेंडाजोल और डीसी दिया जाता है, एल्बेंडाजोल न केवल फाइलेरिया वाले कीटाणुओं को मारता है, मतलब मार तो नहीं पाता है, कम कर देता है उनका रिप्रोडक्शन, केवल माइक्रो फाइलेरिया को मार पाता है, पर एल्बेंडाजोल जो आंत वाले हमारे कीड़े थे, कृपी जो मैं पहले बता रहा था आपको, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, उनको मारता है। तो कम से कम वो जो मैल न्यूट्रिशन है वो भी कम होगा अगर ये दवाएं सब लोग टाइम पे खा लेंगे। अनीमिया का एक मुख्य कारण होता है हुकवर्म, ये हमारे आंतों में रहता है और खून चूसता है। जहां जहां पे ट्रिपल ड्रग थेरेपी है, आइवरमेक्टिन दिया जा रहा है, आइवर

0: फिर उस हुकवर्म को भी मारती है, यानी कि जो ब्लड सक करने वाले वर्म्स हैं वो भी मर जाएंगे, जिसका बेनिफिट होगा अनिमिया हमारा कम होगा। तीसरी चीज, जहां जहां ट्रिपल ड्रग थेरेपी दी जा रही है वहां पे और बेनिफिट है, जैसे स्केबीज है, जो दाद खाद खुजली हम बता रहे थे आपको, और जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जो जुए होते हैं आइवरमेक्टिन से, वो भी मर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार की मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रिपल ड्रग में, न सिर्फ फाइलेरिया बल्कि पेट के आंत के कीड़े, खुजली वाले कीड़े, हुकवर्म और जुए, ये सब भी मर जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को देना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर्स हर घर में नहीं पहुंच पाएंगे, और आपको सिर्फ एक चीज कहनी है कि डोंट वेट फॉर हेल्थ वर्कर टू कम टू योर हाउस, यू शुड एक्चुअली अप्रोच टू द हेल्थ वर्कर एंड ट्राई टू गेट द मेडिसिन एज सून एज पॉसिबल। इसको केवल चबा के खाना है, चबा के खाना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चबा के खाना है। जो दूसरी आप देख रहे हैं बीच में सफेद कलर की, ये आइवरमेक्टिन की गोली है, इसको पानी के साथ लेना है। इसका नियम ये होता है, ये हाइट के हिसाब से होती है, 5 साल से छोटे बच्चों को आइवरमेक्टिन नहीं दी जाती है, 90 सेंटीमीटर के आमतौर पर उनकी हाइट होती है। तो 90 से 120 सेंटीमीटर के लोगों को एक गोली, 120 से 140 तक दो गोली, 140 से 160 तीन गोली, और जो 160 सेंटीमीटर से ऊपर है उसको चार गोली दी जाती है। और जो तीसरी गोली आप देख रहे हैं ये DEC है, ये उम्र के हिसाब से दी जाती है, 2 साल से 5 साल के बच्चे को एक गोली, 5 से 15 साल के बच्चे को दो गोली, और 15 से बड़े को तीन गोली। कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है जो एडल्ट होगा उसको मल्टीपल टैबलेट्स मिलेंगी, उसे घबराना नहीं है, वो उसके मिल रही है मल्टीपल टैबलेट्स, क्योंकि उसकी डोजिंग उम्र और वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से होती है। कई लोग सोचते हैं कि एक खा लेंगे बाकी छोड़ देंगे और हमारा अभियान में रोल हो गया। तो आप कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से बार बार लोगों को बताइए, पूरी डोज लीजिए। आप सोचिए कि फूल झाड़ू से मार ले, क्या होगा, उल्टा आपको आके काट ही रहेगा। तो यहाँ पे समझाना है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट को बचाने के लिए डोज पूरी लेनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने इतना साथ दिया, और अब मैं ओपन करता हूँ डिस्कशन। अर्चना जी, ओवर टू यू।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

नमस्कार, मैं मनोज वाजपेयी। मेरा बचपन ऐसे ही एक छोटे गांव में बीता है और मैंने लोगों को काला आजार की बीमारी से होने वाली तकलीफों से लड़ते हुए देखा है, इसलिए मैं जानता हूं कि काला आजार जैसी जानलेवा बीमारी कितनी तकलीफ दे सकती है। जैसे मलेरिया मच्छर से फैलता है, उसी तरह काला आजार बालू मक्खी से फैलने वाली एक घातक बीमारी है। तो आज मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, शरीर में कालापन दिखे या पेट में सूजन रहे तो तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में इसकी जांच कराएं। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में केवल मुफ्त जांच और इलाज ही नहीं, मजदूरी का मुआवजा भी मिलता है। बस एक आखिरी बात, जब भी सरकारी छिड़काव कर्मी बालू मक्खी के खात्मे के लिए आपके घरों में आए तो कृपया उनकी सहायता पूरी तरह से करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा सहयोग खत्म करेगा

0: नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार जूनियर सनी देओल टीवी आर्टिस्ट। और दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं आजाद हिंद रेडियो एफएम सुभारती मेरठ। दोस्तों मुझे यहां कर पता चला कि टीवी की जो बीमारी है उसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं, कुछ जानकारी देना चाहता हूं आज इस विषय में कि टीवी एक बहुत ही घातक बीमारी है, बहुत ही भयंकर बीमारी है, लेकिन इसका भी इलाज है। हमारे शहर में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उन्हें
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी। मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए। छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
4: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाझरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।

0: के साथ।
1: And here we go, आरजीवंशी ने स्टूडियो है। हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजीवंशी और लेकर हाजिर हूँ आपके वाला प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सखी और संसार। 9:11 26 सितंबर आज की तारीख और सितंबर भी देखना देखते देखते ऐसे ही निकल गया है ना। और अब आगे तो फेस्टिव सीजन आने ही वाला है आज से, हालांकि पितृपक्ष चालू हो गया है, लेकिन फिलहाल चलिए गुड वाली मॉर्निंग, रेनी रेनी मॉर्निंग हुई आज तो हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ पर क्या वेदर अपडेट है आप मुझे ज़रूर बता सकती हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है 9639012111। फिलहाल गुड वाली मॉर्निंग, गुड वाली वाइब एंड गुड वाला थॉट ऑफ द डे, ज्ञान और चरित्र ही इंसान की वास्तविक पूंजी है। धन आता और जाता रहता है दोस्तों, पर ज्ञान सदैव साथ ही रहता है। इसीलिए भौतिक संपत्ति जिसमें धन, गाड़ियां, मकान वो जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। समय और परिस्थितियों के साथ धन कम या समाप्त हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान और अनुभव आपने अर्जित किया है ना, उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। चरित्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना होता है। विषम परिस्थितियों में भी व्यक्ति की साख और सम्मान उसके चरित्र और व्यवहार पर ही टिका रहता है। इसलिए दोस्तों, जब आप नए हुनर, सकारात्मक सोच और आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं ना, तो सफलता और भौतिक सुविधाएं खुद ब खुद आपके पीछे आती रहती हैं। इसीलिए रोज कम से कम 15 से 20 मिनट कोई प्रेरणादायक किताब या नया विषय पढ़ने की आदत डालें। वहीं अपने विचारों, वचनों और कर्मों में स्पष्टता व ईमानदारी बनाए रखें। साथ ही साथ ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके मानसिक और बौद्धिक विकास में सहयोग करें, क्योंकि आफ्टर ऑल संगति मैटर्स, इजंट इट। चलिए बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ, इस गाने को एंजॉय करेंगे, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। एंड यस, गुड मॉर्निंग।

हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. और दोस्तों बहुत सारी बातें लेकर फिर से हाजिर हूँ आपके पास। 9:32, 26 सितंबर आज की तारीख और राजा मूवी का काफी प्यारा सा गाना एंजॉय किया। मतलब 90s में ना ये गाना इतना ज्यादा ट्रेंड में था, ओ माय गॉड। और जब भी आज के टाइम में इस गाने को सुनते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं से डांस मूव्स निकल ही पड़ती है ना। इसी के साथ चलिए, आज की तारीख है 26 सितंबर और आज के दिन क्या है खास, क्या कहता है आज का इतिहास, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत के महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी जो रहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। उन्होंने महिला शिक्षा और विडो रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको जाना जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1820 में इनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। वहीं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था 1932 में। 1991 में वित्त मंत्री के रूप में भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी कि LPG रिफॉर्म्स की शुरुआत करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। वहीं हिंदी सिनेमा के सदाबहार अभिनेता, निर्देशक और निर्माता देव आनंद का जन्म भी 26 सितंबर 1923 को हुआ था। 6 दशकों तक अपनी अभिनय शैली से दर्शकों का दिल जीतने वाले देव आनंद साहब को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं आपको बताऊंगी 1962 के भारत चीन युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाने वाले और मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के नायक सूबेदार जोगिंदर सिंह का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था 1921 में। तो जन्म के लिहाज से आज का दिन काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि इतनी बड़े बड़े हस्तियों का आज जन्म हुआ था। वहीं आपके घर में क्या है आज खास, बता सकते हैं आप मुझे। सैटरडे का दिन है आज, संडे की क्या प्रिपरेशन चल रही है ये भी बता सकते हैं। और पितृपक्ष भी आज से शुरू हो गए हैं और जल्द ही फिर शहनाइयाँ भी बजती नजर आएंगी, है ना, घरों में। और फिर होगी तैयारियाँ शुरू शॉपिंग की। आपके घर में अगर कोई शादी आने वाली है आसपास की डेट्स में तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प तो कर ही सकती हूँ बजट मेकिंग में और शॉपिंग की वेन्यू बता करके। फिलहाल आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा सा गाना, इस गाने को एंजॉय करेंगे, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। नंबर मेरा नोट कर लीजिए, 9639012111, इस नंबर पर आप मुझे नॉक नॉक नॉक नॉक कर सकते हैं। फिलहाल ये गाना आपके लिए।

0: है आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। प्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
5: हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी, द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। आरजे वंशी के साथ।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, 9:50 हो गए हैं, 26 सितंबर आज की तारीख है और सैटरडे आज का दिन है। वहीं कुछ लोगों में संडे का जो बेसब्री से इंतजार हो रहा था वो पूरा होने वाला है फाइनली। चलिए, आज की हम बात कर रहे थे आपसे कि आज आखिर क्या है खास। मैं आपको बता देती हूँ, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का विशेष थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी के सापेक्षता सिद्धांत से जुड़ा ऐतिहासिक शोध पत्र जिसका नाम था एनालेन डेयर फाइसिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसने भौतिकी के सिद्धांतों को हमेशा के लिए बदल दिया था। और ये किस्सा हुआ है 1905 में। वहीं आपको बताऊं, अंग्रेजी खोजकर्ता सर फ्रांसिस ड्रेक गोल्डन हिंद जहाज से पूरे विश्व का चक्कर लगाकर वापस ब्रिटेन लौटे थे आज के दिन 1580 में। वहीं 1960 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के बीच इतिहास की पहली टेलीविजन बहस प्रेसिडेंशियल डिबेट प्रसारित हुई थी, जिसने आधुनिक चुनावी राजनीति का स्वरूप ही बदल दिया था। वहीं 1998 की बात करें तो सचिन तेंदुलकर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे मैच में अपना 18वां शतक बनाकर डेसमंड हेंस का सबसे ज्यादा वनडे शतकों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ डाला था। वहीं 2011 में दिल्ली मेट्रो दुनिया का सबसे पहला ऐसा रेलवे नेटवर्क बना जिसे संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन द्वारा कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट दिया गया था। और भी कई ऐसे नोटेबल चीजें हैं जो आज के दिन दर्ज हैं, बताऊंगी आपको सारी की सारी बातें। फिलहाल चलिए, बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ, ताल मूवी का। इस गाने को एंजॉय करेंगे, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा दोस्तों।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर।

0: अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी। मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ में।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
4: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और क्या बेहतरीन गाना एंजॉय किया है अभी हमने, मतलब इतना सूदिंग गाना कोई कैसे हो सकता है, इतना प्यारा गाना जब आप उसको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आप ना अपने आप को हील कर रहे हैं, है ना। म्यूजिकल हीलिंग आपने सुनी होगी, म्यूजिक थेरेपी सुनी होगी, तो बिल्कुल वैसे ही उसी टाइप का ये गाना भी हमने एंजॉय किया। बाकी 10:10 हो गई हैं दोस्तों, 26 सितंबर आज की तारीख है। और आज के बारे में मैं काफ़ी चीज़ें आपको बता रही हूँ कि आज का दिन क्यों हो जाता है खास। देखिए आपको बता दूं कि हिंदी और बांग्ला फिल्मों के दिग्गज प्लेबैक सिंगर, संगीतकार और गायक हेमंत कुमार जो रहे, जिनको हम हेमंत मुखर्जी के नाम से भी जानते हैं, उनका निधन आज ही के दिन 1989 में हो गया था। वहीं भारत में आधुनिक नृत्य के जनक और प्रसिद्ध नर्तक पंडित उदय शंकर का निधन भी आज ही के दिन हुआ था, साल 1977 में। वहीं आपको बताऊं कि भारत के प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी के CSIR की स्थापना आज ही के दिन 1942 में हुई थी। और आज क्योंकि है 26 सितंबर, आज पूरे विश्व भर में मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे यानी के विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। पर्यावरण स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन के बारे में कुछ और बातें भी आपको बताऊंगी आपको कुछ और खास बातें, लेकिन फिलहाल मैं चाहूंगी कि आप भी मुझे अपनी खास बेखास बातें कुछ बताएं और मुझे कॉल करें 9639012111 पर। किसी गाने की फरमाइश करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, और किसी को कोई गाना डेडिकेट करना है तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे CSIR फाउंडेशन डे के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे के बारे में। तो कहीं मत जाइए, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। अगला गाना 1942 अ लव स्टोरी का बहुत ही प्यारा सा गाना, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा आज का सॉन्ग्स कलेक्शन।

0: कम ऑन रिया,
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
2: मेरी भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
2: वाओ।
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
2: नॉट लिसनिंग
1: टू यू। कुछ ही दिन में नजरे इनकी इधर उधर मंडरा।
2: नॉट लिसनिंग
1: टू यू। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
2: ओके, आई एम नॉट विद हर।
1: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
2: ओके, दैट्स इट।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों अभी हमने गाना एंजॉय किया, यार ये शटडाउन हो गया।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
2: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ और इसी के साथ, क्योंकि प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि मेरी आपसे बातें होती ही रहती हैं और मैं आपकी बातें सुनती हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ और मुझसे कहना है, कुछ और मुझसे शेयर करना है तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा नंबर हो जाता है मेरा 9639012111। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। इसी के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर भी, यानी कि आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, मेटा, एक्स और यूट्यूब पर हमारे आजाद हिंद रेडियो से। बाकी आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आपको जाना होगा सर्च करने के लिए आजाद हिंद रेडियो और बहुत ही आसानी से आपको हमारा अकाउंट मिल जाने वाला है। बिल्कुल वैसे ही मेटा पर अगर आप आजाद हिंद रेडियो सर्च करते हैं तो आपको हमारा पेज जरूर मिलने वाला है। आप उससे जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए और हम तक अपनी बातें सीधे पहुँचाइए। और साथ ही साथ आप बाकी के सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप जा रहे हैं हमारी पहुँच से दूर, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी से दूर और आप तक हमारी रीच नहीं बन पा रही है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। और जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी और मुझे भी बताकर ही बहुत खुशी होती है कि मेरठ में ये पहला रेडियो स्टेशन है जिसके पास मोबाइल एप्लीकेशन है और अभी तक ये इकलौता ऐसा रेडियो स्टेशन है जो आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें और अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहें, अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहें और अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाते रहें, तो इसी सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये आपके लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनवाया है। तो आप इसको इंस्टॉल करें, हमसे जुड़ जाएं और अपनी बात सीधे हम तक पहुंचाएं, हमसे शेयर करें जो भी आप कहना चाहते हैं। किसी गाने की फरमाइश करनी है तो वो कर सकते हैं, किसी को कोई गाना डेडिकेट करना है तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप अच्छा लिखते हैं या बोलते हैं तो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ लिखते हैं तो वो जरूर हमें लिख करके भेजिए, हम आपके नाम के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आप हमें वॉइस नोट भी भेज सकते हैं अपने किसी पीस ऑफ राइटिंग या पीस ऑफ आर्ट को लेकर के। बाकी अभी तो इतना ही कहूंगी कि आप इतना प्यार भेजते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल आपके प्यार को सलाम करते हुए ये गाना आपके लिए लेकर आई हूँ। आप यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313.

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, बहुत सारी बातें आपसे कर रही हूं और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 11:11 हो गए हैं, 26 सितंबर आज की तारीख है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं डिकेस्टो फ्रेंड्स एंड फैमिली, जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो के साथ विलिस डिकेस्टो, और साथ ही साथ कुमार हेड़ा से सैयद मशरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और सद्दाम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और आपने एक गाने की फरमाइश भी की है, बिल्कुल हम उसको प्ले करेंगे कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम ना बात कुछ आज के बारे में कर रहे थे, है ना, तो वो बात मैं बिल्कुल आपसे करूंगी। बाकी आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है, 9639012111। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर भी, यानी कि आप जा सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम, मेटा बोले तो फेसबुक अकाउंट पर भी, और वहाँ पर भी रह करके हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आप जा सकते हैं प्ले स्टोर पर, वहाँ पर आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा और उस पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बता सकते हैं अपनी बातें हमसे, क्या आप चाहते हैं और क्या आप नहीं चाहते। फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आ रही हूँ, इस गाने को हम इंजॉय करेंगे, उसके बाद आज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। हर साल ये इसी दिन मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच के गहरे संबंध को उजागर करना और लोगों को पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। इसके बारे में कुछ और बातें भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस दिन की जो घोषणा हुई थी वो 26 सितंबर 2011 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ यानी कि IFEH द्वारा इंडोनेशिया के बाली में की गई थी। और इस दिन की नींव IFEH की उस सोच पर रखी गई थी कि हमारा स्वास्थ्य सीधे तौर पर हमारी हवा, पानी, मिट्टी और आसपास के परिस्थितिकी तंत्र की स्वच्छता पर निर्भर करता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस दिन को मनाना शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे, और पर्यावरण का संबंध मानव स्वास्थ्य के साथ कैसे हो सकता है इसके बारे में भी आपसे काफ़ी सारी बातें करेंगे। फिलहाल चलिए, प्यारा सा गाना आपसे कुछ कह रहा है, सुनते हैं साथ में।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
3: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. और दोस्तों, आज की तारीख है 26 सितंबर, 11:39 हो गई हैं और इसी के साथ वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे है आज के दिन. और इसी के बारे में हम बात कर रहे थे. मैं आपको बता दूं कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो वायु प्रदूषण, दूषित जल, जहरीले रसायन और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे कि जो अस्थमा के मरीज होते हैं या कैंसर और संक्रमण के प्रति हमें सतर्क करना, इसका एक उद्देश्य हो जाता है. वहीं प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देना, इसका एक अहम उद्देश्य हो जाता है. वहीं आपको बताऊं, दुनिया भर की सरकारें और आम जनता को ऐसे नियम बनाने के लिए प्रेरित करना जिससे पर्यावरण के क्षरण को रोका जा सके. आपको बताऊं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया भर में बीमारियों के कुल बोझ का लगभग 24% हिस्सा सीधे तौर पर पर्यावरण से जुड़े खतरों से संबंधित है. अगर वायु प्रदूषण की बात करें तो इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव जो पड़ता है वो फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं, लोगों को अस्थमा हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है. वहीं दूषित जल और स्वच्छता की कमी अगर रहती है तो हैजा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है या डायरिया भी हो सकता है. प्लास्टिक और रासायनिक अपशिष्ट जो होते हैं उनसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. और जलवायु परिवर्तन अगर होता है तो हीट वेव, संक्रामक बीमारियां जैसे कि डेंगू और मलेरिया, इसका प्रसार आराम से हो सकता है. तो इसीलिए हमें अपने एनवायरमेंट की हेल्थ के प्रति भी सजग रहना होगा और उसके फेवर में काम करने होंगे. इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ बचा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं और बचा भी सकते हैं, क्योंकि आजकल कटाई भी ज़्यादा ही होने लगी है पेड़ों की. और सिंगल यूज प्लास्टिक का आप बहिष्कार कर सकते हैं, कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग कर सकते हैं, पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं और जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं. और सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी स्वच्छ तकनीक को अपना करके अपना योगदान जो है वो दे सकते हैं. तो आप क्या करने वाले हैं आप मुझे जरूर बता सकते हैं. नंबर बहुत ही आसान सा है, 9639012111. मीनवाइल हम इंजॉय करेंगे दीवाना मूवी का बहुत ही प्यारा सा गाना. उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें. कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM.

हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 एफएम। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। आरजे वंशी के साथ।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. दोस्तों 11:55 as per my studio clock. और अभी हमने लता जी की वॉइस में बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय किया। बाकी 26 सितंबर के बारे में बात कर रहे हैं और इसी दिन मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस भी मनाया जाता है आज ही के दिन। और CSIR जो है वो भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है, जिसके अंतर्गत देश भर में प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों का एक बड़ा नेटवर्क काम करता है। इसके इतिहास के बारे में बात करें तो इसके संस्थापक रहे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और अर्कट रामासामी मुदलियार। वहीं अध्यक्ष की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री CSIR के पदेन यानी के एक्स ऑफिसियो अध्यक्ष होते हैं। वहीं इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 45 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और वहीं आपको बताऊं, भारत के चुनावों में उंगली पर लगाई जाने वाली जो खास स्याही है ये भी CSIR की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है। वहीं भैंस के दूध से बना भारत का पहला शिशु आहार जिसे हम एमुल स्प्रे कहते हैं वो भी CSIR की प्रमुख उपलब्धियों में काउंट किया जाता है। और हंसा प्रशिक्षण विमान का निर्माण, सस्ती जीवन रक्षक दवाइयां और COVID-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण चिकित्सा समाधान भी इसी की उपलब्धि के अंतर्गत काउंट किया जाता है। बाकी और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगी सारी की सारी। मीनवाइल आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है, 9639012111।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
4: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए। छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: अरे अरे अरे रुको, क्या कर रही हो?
1: क्या कर रही हो मतलब रात का बासी पानी फेंक कर ताज़ा पानी भर रही हूँ।
0: रात का बासी पानी?
1: जी, अब पीने के लिए तो ताज़ा पानी भरना ही पड़ेगा ना।
0: तुम्हें पता भी है, देश के ना जाने कितने हिस्सों में लोगों को ऐसा पानी नसीब नहीं होता। वो सड़ा हुआ गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और तुम कहती हो बासी पानी, एक दिन में थोड़ी पानी खराब होता है।
1: तो फिर कैसे किया जाए?
0: इस पानी का जहाँ हो सके उपयोग किया जाए, और इस तरीके से फेंका या बहाया तो बिल्कुल ना जाए।
2: क्योंकि ऐसा करना पानी को उड़ेलना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य के साथ खेलना है। जल है तो कल है, पानी बचाइए, भविष्य बनाइए।
3: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।

Hi everyone, I am Kapil Ghori, the International Fashion Show Director. आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 FM. Nation first, always first.

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
2: यू ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाझरा, देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किशोर में
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
4: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की

హలో 9820262122 BPL. అరే 9820262 3 5 మ్యాక్స్ టచ్. యార్

जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, जिनके कारण हम सभी आजाद हुए। आइए हम सब मिलकर गाएं आजाद हिंद गान और करें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। जय हिंद।

0: जय हिंद वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और बहुत ही लंबे समय के बाद आपका इंतजार खत्म होता है। हमारे आदरणीय आरपी सिंह सर, जो आपको पुराने जमाने की उन खूबसूरत यादों में लेकर चलते थे, रूबरू कराते थे, लौट आए हैं एक लंबी छुट्टी के बाद। कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ और सर फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपका भी। सर
1: कृष्णा, मैं स्वागत तो चलो अच्छा है, जरूर होना चाहिए
0: जी,
1: लेकिन असली बात यह है कि ये मेरा स्टूडियो है और मैं ये बहुत नम्रता के साथ तुमसे कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई स्वागत वाली बात नहीं है
0: जी।
1: ये मेरा काम था, लेकिन हाँ चलो कुछ मेडिकल लीव के कारण मुझे जाना पड़ा। आजाद हिंद रेडियो एक ऐसा रेडियो है जो कि सुभाष चंद्र बोस को डेडिकेटेड है और जैसा कि आपने सुना होगा, जान रहे हैं, आज एक विशेष कार्यक्रम ये है कि आज हम लोग कुछ अलग हटके कुछ प्रोग्राम करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा
0: जी। तो मैं चाहूंगा सर कि क्योंकि आज की डेट भी स्पेशल है, देवानंद साहब का जन्मदिन है और हम भी उनके गानों को देखकर सुनकर ही बड़े हुए हैं, तो यादों के उस झरोखे से बिल्कुल हम गुजरेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे थोड़े ही दिन पहले वीडियो ट्रेंड कर रही थी, आपने मुझे भी वो दिखाई कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर भी उस पुराने गीत को गुनगुना रहे थे, उसके दो बोल आप भी गुनगुनाएं। और
1: जी हाँ कृष्णा, ये बड़े गर्व की बात है हम सब भारतीयों के लिए कि ये जो ट्रेंड था कि पहले लोग भारतीय गाने जैसे आवारा का गाना या ये सब के गाने अक्सर गाते थे और लोग गुनगुनाते थे, फॉरेन में भी, जर्मन लैंग्वेज में भी हैं, रशियन में बहुत से हैं
0: जी।
1: लेकिन बहुत दिन बाद एक ऐसा ट्रेंड आया जिसने कि सारे भारतीयों को गर्व से भर दिया। वो है मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इब्राहिम साहब ने एक गाना सुनाया अपनी आवाज में, एक स्टूडियो में सुनाया। और अगर सच में देखा जाए तो वो गाना ऐसा है जो कि हर एक का दिल अजीज है। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
6: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
5: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर, गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
7: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
8: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

जय हिंद। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह है आपका अपना वो रेडियो जहाँ पर सिर्फ आम बातें नहीं होती, यहाँ पर बातें होती है खास। इसीलिए हम कहते हैं राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, जहाँ पर देश सर्वोपरि है, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। आज का कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल है, चलिए मिलकर स्वागत करते हैं।

0: मीडिया जगत के जाने माने नाम जिन्होंने अपने पूरे जीवन में मीडिया के माध्यम से देश की सेवा की, हमारे आज के खासम खास मेहमान हैं आदरणीय आरपी सिंह जी। सर आपका स्वागत है आजाद हिंद रेडियो पर।
1: कृष्णा आपने बहुत ज्यादा बोल दिया, हम जितने भी हम हैं, मैं तो ये कहता हूं कि भारत में अगर हम लोगों की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो देश प्रेम का खून है और जिस धरती पे हम बैठे हैं वो वैसे भी मेरठ है और मेरठ जो है वो आजादी की शुरुआत का एक बहुत बड़ा सिग्नेचर है
0: जी।
1: तो मैं तो ये कहता हूं कि मैंने अपने पूरे कैरियर में कई बड़े चैनलों में हम लोगों ने काम किया, लेकिन अगर देखा जाए तो चाहे वो कोई भी हो, मैं कहता हूं कि अगर वो एक रिक्शे वाला भी है
0: जी
1: वो भी देश सेवा कर रहा है। खास बात आपसे शेयर करने जा रहे हैं जो कि आजाद हिंद रेडियो के लिए या आजाद हिंद रेडियो के लिसनर्स के लिए बहुत ही गर्व का विषय है।
0: जी सर,
1: जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा एक पाकिस्तान का बॉर्डर है अटारी।
0: जी सर,
1: अटारी बॉर्डर जो है वो पंजाब के बिल्कुल लगा हुआ है। इत्तेफाक की बात है, कवर करने कई बार मैं उस बॉर्डर पे गया हूं, मैंने वहां का फ्लैग उतरना और फ्लैग चढ़ाना सब कुछ देखा है
0: जी।
1: लेकिन एक नई न्यूज आई है कि वहां पे हम लोग 360 फीट ऊंचा अपना भारतीय तिरंगा फहराने जा रहे हैं।
0: क्या बात है,
1: और 360 फीट ऊंचा और वो भी उस जगह जहां अभी तो जैसा आपने देखा एक छोटी सी आंधी ने कितने घर उजाड़ दिए, तो 360 फीट लंबा अगर कोई पोल खड़ा हुआ है तो उसको कम से कम धरती में वो 300-400 फीट अंदर जाना चाहिए
0: जी।
1: तो मैंने देखना शुरू किया कि आखिर में उस फ्लैग के गाड़ा कितना जाएगा, तो बाद में मुझे पता चला कि वो 200 मीटर नीचे फ्लैग गाड़ा जाएगा
0: जी
1: और फिर उसका पोल इतना ऊपर होगा। तो ये हम सब के लिए बहुत ही प्राउड की बात है और हम कहते हैं कि हम फिर एक बार बोल सकते हैं कि जय हिंद की सेना जो कि आजाद हिंद थी, बहुत ही आगे भी हम सब भारतीयों के लिए एक प्राइड का विषय होगा।
0: सर आपने बहुत ही कमाल की जानकारी दी। दोस्तों हमारे देश का ये झंडा जहां भी लहराएगा हमारी रगों में रवानगी दौड़ा जाएगा। सर आपने कमाल की जानकारी दी। दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इस गाता रहे मेरा दिल जहां पर पुराने जमाने के गाने हमेशा हम गुनगुनाते रहते हैं और हर कोई सर ये कहता है कि पुराने गानों में जो बात थी वो नए गानों में नहीं होती, इसीलिए आदरणीय आरपी सिंह जी के साथ में हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे गुजरे हुए दौर की, उस जमाने की जो शायद कभी लौट कर तो नहीं आएगा लेकिन हमारे रेडियो पर हर रोज आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उसे गुनगुना सकते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे एवरग्रीन के बारे में, एवरग्रीन जमाने, वो एक जमाना वो एक फसाना। सर उस पुराने जमाने से आज किस सितारे को आप लेकर आए हैं?
1: जैसा कि हमारी आपकी फोन पे बात हुई, आज मैं अपने एक ऐसे सितारे की बात करना चाहता हूं आपके साथ, हो सकता है आप एग्री करें या ना करें
0: जी।
1: जो आपने कहा एवरग्रीन
0: जी,
1: तो एवरग्रीन तो एक ही था जिसको कि मैं कह सकता हूं, हो सकता है कि इस पे भी लोग बोले अरे नहीं भाई आज तो एवरग्रीन बहुत से लोग हैं
0: जी,
1: लेकिन एवरग्रीन तो एक ही था, वो थे देवानंद।
0: क्या बात है सर,
1: और सच में अगर देखा जाए तो उनको एवरग्रीन हीरो माना जाता था, माना जाता है और आगे आने वाले समय में भी देवानंद को एवरग्रीन हीरो माना ही जाएगा।
0: जी सर, दोस्तों अगर आप भी देवानंद साहब के बारे में कुछ जानते हैं और कुछ हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है हमारा 9639012111। सर क्योंकि आपने भी वो गोल्डन एरा देखा है, वो जमाने देखे, मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम की शुरुआत में देव साहब का कोई गीत जो हम अपने श्रोताओं को सुना सकें।
1: देखिए सबसे ज्यादा अब हम उसकी क्रोनोलॉजी पे चलें तो देवानंद के गीत तो मेरे समझ में शायद दिन भर सुने जाए तो भी कम है
0: जी सर,
1: लेकिन क्रोनोलॉजी पे चलें तो सब क्रोनोलॉजी को किनारे रख करके हम सबसे पहला गाना हमारे समझ में बजा सकते हैं, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल।
2: गाता रहे,
0: आइए दोस्तों सुनते हैं यही खूबसूरत गीत, देवानंद साहब की बात कर रहे हैं।

बहुत ही खूबसूरत गीत सुना भी आपने। सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर मैं हूँ वास्तु कृष्णा और हमारे स्टूडियो में आज हमारे मेहमान हैं आदरणीय आरपी सिंह जी, जिन्होंने जिंदगी भर मीडिया में सेवा की है और अभी भी कर रहे हैं। और बात कर रहे हैं आज हम यहाँ पर पुराने जमानों के बारे में, सर गीतों के बारे में, गानों के बारे में और देवानंद साहब की फिल्मों के बारे में तो बात जरूर करेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि जब आप युवा थे, आप जवान थे, तब उस समय देवानंद साहब के बहुत सारे गाने हिट हुआ करते थे, वो

0: जुबली कुमार या सिल्वर जुबली उनकी फिल्में हुआ करती थी, कोई किस्सा जो आपको याद आता हो वो बताएं।
1: देखिए, मैं इससे पहले बहुत से किस्से हैं देवानंद के
0: जी,
1: जो कि जब मैं पढ़ता था
0: जी
1: उस समय से लेकर के और शायद अब तक हम लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं
0: जी।
1: सब कुछ खत्म हो गया बहुत पहले
0: जी,
1: लेकिन हम लोग वो करते रहते हैं। मुझे याद आज भी है जिस जगह हम पढ़ते थे वो एक भारत का बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है BHU
0: जी,
1: उसके पास ही एक सिनेमा हॉल था। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इन सब का नाम नहीं लेना चाहिए
0: जी।
1: अगर उसमें देवानंद की फिल्म लग जाती थी तो पहले शो में बनारस का कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता था, क्योंकि सबको पता था कि ये जितने BHU के स्टूडेंट हैं पहला शो सब वही देखेंगे।
0: अच्छा,
1: और सब देखते थे।
0: क्या बात है।
1: मेरा तो रिकॉर्ड ये था कि हम लोग अपनी क्लास में टीचर तक को पता रहता था, हमारे प्रोफेसर तक को पता रहता था कि आज सब बंक करने वाले हैं।
0: अच्छा,
1: तो ये देवानंद का क्रेज था।
0: सर, उनका क्रेज तो अमेजिंग था और आपने तो वो दौर जिया है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये भी बताएं कि हमने सुना है कि देवानंद साहब को काले कपड़े पहनने पर बैन था, पर क्या आपने भी काले कपड़े जवानी के दिनों में सिलवाए थे?
1: कृष्णा, देखो बात एक है
0: जी
1: कि ये बात तो है, बहुत से उस समय भी हम लोग सुनते थे, आज भी हम सुनते हैं। सबसे ज्यादा वेबसाइट पे जहां भी आप देवानंद के बारे में ये करोगे वो निकलेगा, क्योंकि उनका एक क्रेज था। कई लोगों का कहना यह था कि काले कपड़े पहन के जब देवानंद चलते हैं तो लड़कियां गिर जाती हैं। लड़कियां तो वो जब सफेद कपड़े पहन के चलते थे तब भी गिरती थी। देवानंद की एक स्टाइल थी, पहन के चलते थे तब भी गिरती थी। देवानंद की एक स्टाइल थी, जैसे अक्सर जब हम लोग जब पढ़ते थे BA में या और भी इंटरमीडिएट में
0: जी,
1: तो बाल पकड़ के टीचर कहते थे ये घोंसले टाइप का बाल करना बंद कर दे।
0: हाँ।
1: और अगर पढ़ना है तो सीधे बाल छिलवा के आओ,
0: क्योंकि वो देव साहब पफ बनाते थे ऐसे।
1: पफ बनाते थे और उसमें ऐसा लगता था जैसे आज अगर आप लोगों ने, वैसे पता नहीं आप लोगों ने ये सब जिया है कि नहीं जिया है
0: जी,
1: अगर छोटी चिड़ियों के आप घोंसले देखें
0: जी
1: तो बिल्कुल आपको ऐसा ही मिलेगा।
0: जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर।
1: तो वो घोंसले टाइप का उनकी बात होती थी और उनका एक स्टाइल था। जैसे अब आप देखो, एक डायलॉग बिल्कुल जनरल बोलना है
0: जी,
1: उनकी डायलॉग बोलने की क्षमता अलग थी। मेरे समझ में कोई ऐसा डायलॉग उस समय भी नहीं बोल पाता था और आज भी नहीं बोल पाता जो डायलॉग दिलीप कुमार या जो और लोग
0: जी
1: 10 सेकंड में बोलते थे, 20 सेकंड में बोलते थे, वो डायलॉग 5 सेकंड में बोलते थे ना।
0: बहुत स्पीड से बोलते थे।
1: और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक डायलॉग कहीं से ये निकाल के
0: जी,
1: अगर लिसनर्स को तुम सुना सको।
0: जी, मैं जरूर सुनाऊंगा।
2: आप कहां से पधारे हैं और यहां से किधर को सुधारेंगे?
3: आना जाना हमेशा अपने हाथ में थोड़ा ही रहता है दोस्त। इंसान सोचता है मैं उधर चलूं, किस्मत कान पकड़ कर इधर ले जाती है, सोचता है इधर चलूं, नाक पकड़ कर उधर घसीट लेती है।
2: आपके वचन पत्थर की लकीर है।
3: तंग आकर एक दिन मैंने किस्मत के पास बुलाया और पूछा कि बता तू चाहती क्या है।
2: अच्छा,
3: कहने लगी मन मानी छोड़ो, मेरी उंगली पकड़ के चलो। ठीक है, मैंने कहा तथास्तु। तो देख लो भैया, आज यहाँ कल वहाँ परसों कहाँ।
2: सत्य वचन।
4: भगवान से क्या मांग रही थी
5: पहले तुम बताओ।
4: मैंने भगवान से तुम्हें मांग लिया। सब कुछ प्रभु से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद।
1: और साथ में अब हम लोगों की बात तो बहुत दिन से, बहुत देर से हो रही है
0: जी,
1: तो थोड़ा सा एक बढ़िया सा गाना सुना दो।
0: आइए दोस्तों, सुनते हैं देवानंद साहब का ये गाना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
6: मैं जिंदगी

0: देवानंद साहब की बात कर रहे हैं और हमारे स्टूडियो में बैठे हैं आरपी सिंह जी। देखिए मैं कोशिश कर रहा था देव साहब की तरफ बोलने की, लेकिन वैसे तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो वाकई में कमाल थे। दोस्तों हम यहाँ पर देवानंद साहब की बात करें, हमारे स्टूडियो में आदरणीय आरपी सिंह जी हैं। सर मैं चाहता हूँ कोई किस्सा आप हमारे श्रोताओं को देव साहब का बताएं।
1: देखिए गाने ही गाने का प्रोग्राम है, हो सकता है किस्सा सुनने में लोग इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन फिर भी एक किस्सा फटाफट सुनाता हूँ
0: जी।
1: मेरे भी जैसा मैंने पहले ही कहा कि हम सब के प्यारे हीरो देवानंद थे
0: जी,
1: और अगर एक बार किसी को मौका मिल जाता था, हम सब चाहे मतलब न्यूज वालों को भी
0: जी,
1: तो देवानंद से मिलना नहीं चूकते थे।
0: अच्छा आप मिले थे सर?
1: मेरी इत्तेफाक की बात है कि मैं एक बार मतलब उनके साथ मैं प्लेन पे सफर किया।
0: अच्छा।
1: और दो बार हम लोग मिले,
0: क्या
1: वो भी इंटरव्यू के लिए
0: जी।
1: अब वो अलग अलग किस्से हैं
0: जी।
1: अब जैसे कैसे प्लेन में हम लोग मिले, बॉम्बे से गोवा की फ्लाइट थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इसमें ये फिल्म क्रू भी चलेगा, और हम लोग तो दिल्ली से गए थे गोवा के मतलब बॉम्बे एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी
0: जी।
1: हम सब लोग बस मतलब जिसको कहो कि उनीदे से कुछ मतलब चिढ़े हुए से।
0: अच्छा।
1: सब लोग बैठे हुए थे कि भैया चले
0: जी,
1: तो सुबह 5 या कितने बजे की फ्लाइट थी
0: जी,
1: हम लोग तो जाके बैठ गए। बाद में पता चला कि प्लेन तो आधा खाली है।
0: अच्छा।
1: फिर एकदम से सारे लोग आए, उसमें बिजनेस क्लास में हमारे हीरो साहब देवानंद भी बैठे हुए थे
0: जी,
1: और एकदम से पूरे प्लेन में ये बात लोगों ने करनी शुरू करी, अरे देवानंद देवानंद देवन। हम लोगों ने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो कम से कम बहुत 40-50 मिनट की फ्लाइट लेकिन एक साथ तो है
0: जी, जी, जी।
1: अब इत्तेफाक की बात ही कृष्णा, उस समय कैमरे जो थे, खैर हमारे साथ तो कैमरे भी थे, लेकिन असली बात ये थी कि हम लोगों के पास स्टिल कैमरे नहीं थे। आज तो भगवान ने जिसको कहो कि जिसको कहिए कि मुट्ठी में जो ये जो हमारे जादू दिया है
0: जी,
1: इससे कैमरा भी है, बात भी कर लीजिए, सब कर लीजिए, हम लोग कोई फोटो नहीं खींच पाए। लेकिन हाँ ये जरूर हुआ कि हम लोगों ने चाहे नोट पे सही उनका सिग्नेचर जरूर ले लिया।
0: अच्छा अच्छा क्या बात।
1: तो और किसी को बात करने का कोई मौका नहीं था लिटरली, मतलब अगर देखा जाए तो उस दिन चाय वाय जो भी उस समय फ्लाइट में मिलती थी जैसे तैसे सबने किया, लेकिन सबका अट्रैक्शन पॉइंट था वो देवानंद थे। तो ये देवानंद का अट्रैक्शन था, और ऐसे ही सभी में था, लड़कियों में लड़कों में, इवन हमारे जब उस जमाने के बुजुर्गों में भी था कि भाई ऐसा हीरो जिसके लिए सब लोग परेशान है उसको भी एक बार देख लें। तो सबके साथ था, और हम ये चाहते हैं कि अब हम लोग एक और गाना सुने देवानंद का, कोई बढ़िया सा तड़कता भड़कता गाना सुनाओ जैसे सीआईडी वगैरह से
0: जी। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत देवानंद साहब की फिल्म से। सुनते रहिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
6: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
5: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
7: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
8: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
9: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ वास्तु कृष्णा, मेरे साथ स्टूडियो में आदरणीय आरपी सिंह जी बैठे हुए हैं और कार्यक्रम है आपका जाना पहचाना, वही पुराना दौर, वही पुराना जमाना जो लौटाए। वो सुना ना बचपन में सर आपने भी, वो कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बीते हुए दिन तो लौट ही आएंगे जब सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर एवरग्रीन जमाना लगाएंगे।

0: एक बात और है कि पहले इतने बढ़िया इक्विपमेंट नहीं थे, बहुत भारी भारी इक्विपमेंट हुआ करते थे
1: जी।
0: अगर देखा जाए तो जमाना हम लोगों ने देखा, उस जमाने में 20-25 किलो का तो रिकॉर्डर होता था, और उस समय अगर देखें तो ट्रेन में शूटिंग करना, वही एक जमाना था जहां पे ट्रेन में शूटिंग शुरू हुई थी। खैर उन वो गाने अलग थे, लेकिन इसको देखा देखी अगर देखा जाए तो दो गाने देवानंद के उस समय, बाद में तो देवानंद ने करीब करीब 7-8 गाने ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं ट्रेन को टच करते थे, लेकिन जो दो गाने थे वो बहुत ही फेमस हुए
1: जी।
0: और उस समय के फेमस रेडियो
1: विविध भारती
0: में, और साथ में रेडियो सीलोन बिना का गीतमाला
1: जी,
0: जिसके कि आज भी लोग दीवाने हैं।
1: तो सर ये रेडियो सिलोंग था या सिलोन था?
0: सीलोन।

0: सौ अच्छी चीजें हो जाएं, लेकिन अगर एक चीज खराब हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी पर जाता है।
1: जो आया है वो जाएगा भी।
2: जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है।
0: जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों मेरे दोस्त।
3: सुनिए सुप्रभात, जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया, हर सुबह सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, मेरे यानी वास्तु कृष्णा के साथ।
0: तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते।
4: सुभारती।

0: बार
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं आदरणीय आरपी सिंह जी। पुराने जमानों की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं देव साहब की।
2: देवानंद पैदा तो हुए थे पंजाब में, लेकिन असली बात यह है कि अगर पर्सनल लाइफ की हम बात करें तो स्ट्रगल करने के बाद इनका पहला प्यार सुरैया थी। सो कि हर आदमी जानता है
1: जी
2: कि सुरैया के साथ इनकी बहुत दिनों तक चीजें मतलब मोहब्बत परवान चढ़ती रही।
1: जी सर।
2: जब शादी की बात आई तो जैसा कहा जाता है कि 1948 में विद्या के सेट पे ये दोनों लोग मिले थे
1: जी,
2: लेकिन जब शादी की बात आई तो दो धर्म आपस में मिल नहीं पाए। सुरैया मुस्लिम थी और देवानंद हिंदू थे। सुरैया के घर वालों ने उनको रोका। अब ये तो कहो पहला जमाना था
1: जी
2: कि दोनों ही टॉप थे, दोनों कह सकते थे कि तुम्हें क्या मतलब है, हम तो साथ रहेंगे। जो कि आजकल के तो लड़के जो चाहे आजकल तो वो सबसे पहले बोल देता तो अच्छा तुम चुप रहो तुम चुप रहो, हमारी मर्जी है मैं तो कर लूंगा। रोज ही हम लोग पेपरों में पढ़ रहे हैं, रोज ही सब कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने अपने पेरेंट्स उनके पेरेंट्स की बातों को माना। सुरैया का रिश्ता टूटा और जैसा कहा जाता है कि देवानंद ने सुरैया को एक हीरे की अंगूठी दी थी, और जब ये सब टूटा है तो सुरैया ने वो अंगूठी नदी में फेंक दी।
1: अच्छा।
2: और उसके बाद देवानंद और सुरैया कभी नहीं मिले, किसी सेट पे नहीं मिले।
1: अच्छा।
2: तो ये बहुत ही मतलब आज ठीक है, हो सकता है कुछ लोग कहें यार क्या लेके बैठ गए, लेकिन असल बात ये नहीं है। ये डिटर्मिनेशन की है, ये शादी में सोशल बंधन की है, जो कि हम सब लोग जो भारतीय हैं हम इस रिश्ते को एक जन्म जन्मांतर का साथ मानते हैं। ये उसकी है, आज जैसे नहीं कि मजाक है शादी आज कर ली कल तोड़ दी फिर परसों कर ली अगले दिन तोड़ दी
1: जी,
2: घर वालों की नहीं सुनी, ये सारी बातें हैं। और फिर
1: जी
2: कल्पना कार्तिकेय के साथ हुई 1954 में, और फिर बहुत ही निजी समारोह में इनकी शादी हुई थी। जैसा कि कहा जाता है और लिखा हुआ है कि बहुत कम लोग आए गए थे। जो बुक उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है
1: जी,
2: उसमें सुरैया का भी जिक्र किया है।
1: क्या बात है दोस्तों, यही तो बात है पुराने जमाने की। अगर आपको भी कुछ बताना है देव साहब के बारे में, कोई जिक्र आप भी करना चाहते हैं, कोई किस्सा कोई कहानी आपके पास भी है तो मिलाइए नंबर 9639012111, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। ऑडियो वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। बात कर रहे हैं देवानंद साहब के बारे में, आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: आज समझे।

0: तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज हम देवानंद साहब की बात कर रहे हैं और हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं श्री आर पी सिंह जी। सर, देव साहब के बारे में हमने ढेर सारी बातें की है लेकिन आपने बताया कि आपको उनसे मिलने का एक दो बार मौका भी मिला, तो मैं और हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि देवानंद साहब से जब आप मिले तो आपने उनसे क्या सवाल किए।
1: देखो कृष्णा, देवानंद बहुत ही जिंदा दिल आदमी थे
0: जी,
1: और हमारे समझ में बहुत कम ऐसे लोग अपनी लाइफ में लोगों को मिलते हैं जो कि बहुत ही मतलब जिसको हर तरह से खुश रहने वाले
0: जी।
1: सबको पता है कि नाम तो एवरग्रीन था ही
0: जी,
1: लेकिन माइंड भी एवरग्रीन था। लास्ट तक अपने मरते मरते समय तक वो अपनी फिल्मों पे काम कर रहे थे। लेकिन एक बार ऐसे ही मजाक मजाक में
0: जी
1: हम लोगों ने उनसे पूछा कि सबसे कठिन आपको क्या लगता है, तो उनका जवाब था कुछ नहीं लगता, लेकिन हाँ ये है कि एक फिल्म में जरूर मुझे याद है कि हम जो हैं वो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था
0: जी।
1: हम लोग एक्टिंग तो कर रहे थे लेकिन गाना मैं नहीं गा रहा था, हमारे आगे हीरोइन भी चल रही थी
0: हाँ।
1: लेकिन मैं गाना नहीं गा रहा था, तो हम लोगों ने पूछा कौन सा ऐसा गाना है
0: हाँ।
1: जबकि मुझे याद था हम लोग अपने स्टूडेंट के टाइम में वो गाने देखे थे
0: जी,
1: तो वो गाना है जो वहां बॉम्बे में समुद्र के किनारे
0: जी
1: वो चल रहे हैं
0: हाँ।
1: आगे हीरोइन चल रही हैं और उसके पीछे जो एक हारमोनियम वाला गाना गा रहा है लेके पहला पहला प्यार।
0: अच्छा अच्छा,
1: अगर अगर ये आप सुना सकते हो तो सुनाओ, बहुत ही फेमस गाना है।
0: जादू नगरी से आया है कोई
1: हाँ, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर
0: जी,
1: हाँ जादू नगरी से आया है कोई जादूगर
0: जी।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज हम देवानंद साहब के बारे में बात कर रहे हैं। सर, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे देव साहब के बारे में, उन्होंने बहुत ही अच्छी फिल्में बनाई और एक और किस्सा मशहूर कि वो लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस थे लेकिन बहुत सारी लड़कियों को हीरोइन भी तो उन्होंने बनाया था, तो जरा इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें कि कौन कौन सी हीरोइनों को उन्होंने लॉन्च किया।
1: कृष्णा, मेरे समझ में तो शायद कोई ही ऐसी हीरोइन थी
0: जी
1: जिसके साथ देव साहब ने काम नहीं किया
0: जी।
1: अगर उस समय की टॉप हीरोइन को लें तो माला सिन्हा
0: जी
1: और मीना कुमारी, वैजयंती माला, हर एक के साथ अलग अलग टॉप फिल्मों में काम किया, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि देवन ने अपने करियर में सिर्फ जो पुराने लोग थे उनके साथ काम किया और अपना करियर को आगे बढ़ाया, ऐसा नहीं है
0: जी।
1: देवानंद ने जहां तक मुझे, मैं कह सकता हूं कि कम से कम 7 या 8 हीरोइनों को उन्होंने रिस्क लेकर के अपनी फिल्म में लॉन्च किया
0: जी।
1: मीना कुमारी, वैजयंती माला और माला सिन्हा, यही टॉप हीरोइने थी, लेकिन उसके बाद कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने जो उनके फैंस थे
0: जी,
1: जो लड़कियां उनकी फैंस थी, उनमें से हीरोइन नहीं बनाया। बहुत सी हीरोइने हैं, 7-8 का तो मैं नाम ले सकता हूं
0: जी,
1: जैसे जीना तामान
0: जी,
1: टीना मुनीम, तब्बू, ऋचा शर्मा, नताशा सिन्हा, एकता और अनीता आयुब। उसके बाद अगर देखें तो एक बहुत ही अलग तरीके की एक हीरोइन आई थी जिन्होंने, देवानंद ने अपने फर्स्ट कैरियर में जो डायरेक्टर थे वो एक फिल्म थी प्रेम पुजारी।
0: प्रेम पुजारी,
1: हाँ, जिसमें जायदा को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया
0: जी।
1: पहली उनकी डायरेक्टर फिल्म थी प्रेम पुजारी, में उन्होंने जायदा को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन साथ में वहीदा रहमान भी थी
0: जी।
1: तो प्रेम पुजारी के भी बहुत फेमस गाने हैं
0: जी, जी,
1: और मुझे लगता है कि लिसनर्स को वो पसंद आएंगे
0: जी।
1: वैसे तो जीना तामान ने अगर देखा जाए तो बहुत ही मॉड रोल में
0: जी
1: कई फिल्मों में काम किया
0: जी,
1: जैसे बिल्कुल धड़कड़ धड़ जिसको कहते हैं धड़ल्ले के साथ
0: जी जी,
1: मिनी स्कर्ट में वो आई,
0: वो भी उस जमाने में,
1: वो भी उस जमाने में, जबकि लोगों का कहना ये था कि यार तू बच्चा अगर फिल्म देखने जा रहा है, या जब हम लोग पढ़ते थे कि ये फिल्म देखने जा रहा है बिगड़ जाएगा उस समय
0: जी,
1: लेकिन लोग लाए और वो जमाने से और आज के जमाने में बहुत फर्क है
0: जी।
1: लेकिन अब चलो, हम सबसे पहले अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर प्रेम पुजारी का कोई गाना हो जाए।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों आइए सुनते हैं यहाँ पर प्रेम पुजारी से ये खूबसूरत गाना।
2: वो प्यार है शोकियों में खोला जाए फूलों का शबाब,
0: साथ ही साथ जीना तामान जी का दम मारो दम,
3: दम मारो दम।
0: सुनते रहिए मेरा नंबर 1 सुभारती।

0: भक्ति और सनातन के रंग, सुभारती आजाद हिंद रेडियो के संग। जय हिंद।
1: भवम भवानी सहितम नमामि
0: वास्तु कृष्णा के।

0: ट्रैफिक अपडेट सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। आप हो कहीं भी अपनी गाड़ी में या फंस गए हैं कहीं ट्रैफिक में, पूरे मेरठ की सड़कों का हाल चाल सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। ट्रैफिक स्पेशल में वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: अगर देखा जाए तो रंगीन फिल्म थी गाइड
1: जी,
0: और गाइड हर मामले में अलग थी
1: जी।
0: वैसे तो जितनी फिल्में देवानंद ने बनाई, चाहे वो तेरे घर के सामने हो, चाहे वो जो भी फिल्में थी, वो कहीं ना कहीं कोई सोशल मुद्दे पे बनी हुई थी
1: जी।
0: लेकिन गाइड एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल था समय के हिसाब से, क्योंकि गाइड की जो हीरोइन थी वहीदा रहमान
1: जी,
0: वो एक

0: बहुत बड़े जिसको कहो आर्कियोलॉजिस्ट की या इनकी वाइफ थी
1: जी,
0: उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। और जब ये लोग एक साइट पे जाते हैं तो देवानंद को जिम्मा दिया जाता है कि आप मैडम को घुमाओ।
1: ठीक,
0: कुछ ऐसा हुआ कि साथ साथ रहते रहते एक अट्रैक्शन हो गया। अट्रैक्शन में ये भी बिल्कुल वहां भी अगर देखा जाए तो एक सामाजिक दीवार थी। बहुत ही रोमांटिक गाने थे। आज फिर जैसे ये ट्रक पे बैठे हुए हैं,
1: आज फिर जीने,
0: आज
1: की,
0: फिर
1: तमन्ना
0: जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, बहुत ही रोमांटिक गाने थे। लेकिन अगर देखा जाए तो एक जगह ये भी था कि हमें अपनी सीमाओं को बंद कर रहना है। आज अगर वही फिल्म बनाई जाए तो ये लोग तो ये कहेंगे कि ये तो लेके भाग गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था
1: जी।
0: एक चीज और थी कृष्णा, बड़ी मजेदार, जो कि देवानंद के बारे में मैं बताना चाहूंगा
1: जी,
0: कि देवानंद वैसे तो बहुत ही, जिसको कहो कि सब लोग कहते थे, मैं नहीं कह सकता
1: जी,
0: बहुत ही स्नॉब हीरो थे
1: जी।
0: मतलब अपने नाक नीची नहीं होनी है, अपना रुमाल नहीं खोलना है। लेकिन इन्होंने तीन चार, मुझे दृश्य अभी अभी याद आए
1: जी,
0: कि इन्होंने अजीब हरकतें करी। जैसे
1: जी
0: गाइड में ही एक गाने में इन्होंने वहीदा रहमान की सैंडल उठाई।
1: अच्छा,
0: लेकिन वो सैंडल हाथ में नहीं उठाई।
1: वो लकड़ी के
0: वो सैंडल जो है लकड़ी से उठाई।
1: अच्छा जी,
0: लकड़ी
1: जी
0: से उठा के घूम रहे हैं। एक दूसरा सीन अब लो, जीना तमान को इन्होंने लॉन्च किया
1: जी,
0: हरे रामा हरे कृष्णा में
1: जी,
0: और फिर उसके बाद उनके साथ दूसरी भी फिल्म थी। उस फिल्म में
1: जी
0: इन्होंने जब गाड़ी में से सामान निकाला तो उस समय लोगों ने थोड़ा सा इसको, जो बुड्ढे लोग थे उन्होंने थोड़ा सा इसको इग्नोर किया।
1: अच्छा,
0: क्योंकि वो अंडरगारमेंट उठा करके वो गाना गा रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, उसमें देवानंद उसकी ब्रा और वो ऐसे हाथ,
1: ये शायद ज्वेल थी फिल्म थी,
0: ये ज्वेल थी फिल्म थी।

0: अब उसमें अगर देखें तो ये देवानंद स्टाइल नहीं था।
1: अच्छा,
0: लेकिन एक नए हीरो की, एक चलते हुए हीरो की यही पहचान है कि समय के हिसाब से एक लिमिट तक वो अपने को बदले।
1: जी,
0: तो मैं चाहता हूं कि एक गाइड का जोरदार गाना हो जाए, जैसे बहुत अच्छे अच्छे गाने थे उसमें, डांस पे भी थे
1: जी,
0: जो कि वहीदा रहमान के बड़े अच्छे डांस थे
1: जी।
0: तो देखो अगर आपके पास हो तो एक चला देना।
1: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, पुराने जमाने।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution

0: of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: दोस्तों, ये कार्यक्रम, ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी जरूर बताएगा। आज के इस सुनहरे कार्यक्रम में हमने बात की है देवानंद साहब के बारे में। हमारे आज के गेस्ट, हमारे मेहमान आदरणीय आरपी सिंह जी हैं, और बहुत ही रोचक तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी के किस्सों के साथ साथ कैसे वो देव साहब से मिले और क्या पुरानी यादें थी, वो सब हमारे साथ में सर ने शेयर की। आपके मन में भी अगर कुछ किस्से कहानियां ऐसे हैं दफन, तो उन्हें निकालिए बाहर और भेज दीजिए मेरे पास 9639012111 पर। और अगले कार्यक्रम में हम किस ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करें, किस किस्से के बारे में बात करें, वो भी आप बता सकते हैं। चलते चलते सर, गाना तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन कुछ बात आप चलते चलते श्रोताओं से कहना चाहते हैं?
1: देखिए, मैं खाली एक ही चीज कहना चाहता हूं, जो कि मेरे भी जीवन का एक निचोड़ है।
0: जी सर,
1: हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग सब एक सामान्य इंसान है।
0: जी
1: ठीक है, आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, मैं मीडिया से अपनी रोजी रोटी कमा के अपने बच्चे पाल रहा हूं।
0: जी
1: अपना जीवन बिता रहा हूं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हम सच में सच्चाई से, और अगर जिसको कहते हैं ना जुझारू तरीके से, अगर हम किसी भी काम को करते हैं, हो सकता है कि शुरू में आपको लगे कि नहीं मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो काम जरूर होगा।
0: क्या बात है दोस्तों, चलते चलते जिंदगी का मोटिवेशन सर ने दिया। अगले कार्यक्रम में होगी मुलाकात, सुनते रहिए, जुड़े रहिए सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो के संग।
1: एक चीज और है कृष्णा
0: जी सर,
1: कि अब हम लोग ये भी दर्शकों को बताएं,
0: जी
1: अरे सॉरी दर्शकों को नहीं, हम लिसनर्स को बताएं, श्रोताओं को बताएं
0: जी,
1: कि आप लोग भी किस हीरो हीरोइन के बारे में जानना चाहते हैं।
0: जी
1: हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी रिसर्च से हम लोग वो निकालें, और साथ में मैं एक कोशिश और करूंगा, जैसा कि आज भी हमने किया है
0: जी,
1: कि मैं आज के किसी एक्टर या एक्ट्रेस से उस हीरो के बारे में दो शब्द कहलवाऊं।
0: जी
1: आज आपने इसके बारे में सुना, आपने बहुत टाइम दिया, क्योंकि आज ये कहा जाता है किसी के पास टाइम नहीं है।
0: जी
1: लेकिन एक और भी है इसमें मजेदार किस्सा, किसी के पास टाइम नहीं है ये तो खाली कहने की बात है, सिगरेट पीने, खैनी खाने, पान खाने, बेकार की गप करने के लिए सबके पास टाइम है।

0: यो 90.0 FM पर ट्रैफिक स्पेशल में वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh's Our Voice Get a Fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
7: जय हिंद, नमस्कार, आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज के इस खासम खास कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान जूनियर सनी देओल साहब के नाम से जाने जाने वाले मेरठ के जाने माने कलाकार, जिन्होंने हमारी टीवी इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम किया है। कपिल शर्मा शो से लेकर अन्य जो टीवी जो प्रोग्राम्स आते हैं वहां पर भी अपनी छाप और धमक फैलाते हैं और मेरठ के तमाम बड़े कार्यक्रम भी करते रहते हैं। मुंबई से अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकारों को भी ये बुलाते हैं। मेरठ का जाना माना नाम बन चुके हैं जूनियर सनी देओल साहब, यानी राजीव कुमार जी। सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे स्टूडियो में।
8: जी नमस्कार।
7: तो राजीव जी, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपने स्टाइल में अपना परिचय दें जो पहली बार आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं।
8: देखिए, आप सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं राजीव कुमार जूनियर सनी देओल टीवी आर्टिस्ट, और आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मैं आजाद हिंद रेडियो सुभारती FM में पहुंचा हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी का, जो कृष्णा जी ने मुझे मौका दिया है यहाँ पर आने का। और
7: जी सर, देखिए ये हमारे लिए, मेरठ वालों के लिए बहुत अच्छी बात है कि कपिल शर्मा शो में भी जो आपने धमाल मचाया और आप ऐसे बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स में भी आते रहते हैं। मैं चाहता हूँ हमारे श्रोताओं को एक बार आप उन काम के बारे में भी बताएं कि आप कब कब किस किस प्रोग्राम्स में आए हैं और आने वाले कौन कौन से आपके एपिसोड वगैरह होंगे।
8: देखिए, आर्टिस्ट के तौर पर मैं बताऊं कि 2006 में मैंने लैपटॉप चैलेंज किया था
7: जी।
8: उसके बाद कॉमेडी सर्कस सोनी चैनल पे, रिसेंटली कपिल शर्मा शो, मैडनेस मचाएंगे, इंडिया को हंसाएंगे, और अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले ही लाफ्टर शेप में नजर आया था मैं कृष्णा सुदेश भाई के साथ में। तो शो चलते रहते हैं। और अभी रिसेंटली जो मेरी अपनी कंपनी है सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप
7: जी,
8: जिस कंपनी के बिहाव पे मैं मेरठ में सेलिब्रिटीज लाता हूँ और कलाकारों को मंच देता हूँ, चाहे वो सिंगर्स हो, एंकर हो, या फिर कोई अच्छे आर्टिस्ट हो, कलाकार हो
7: जी,
8: तो इस टाइप के शो करता हूं। लेकिन खास बात क्या है कि इस बार हम लोग आने वाले 2 अक्टूबर श्री गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग एक शो मेरठ में, एक देशभक्ति शो लॉन्च किया है जो आने वाले 30 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है होटल कॉन्वे शॉपिंग मॉल मेरठ में। संदेश से आते हैं
7: जी,
8: ये नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि फिल्म थी बॉर्डर
7: जी,
8: उसका एक गाना था संदेश से आते हैं।
7: हाँ।
8: तो मैंने

0: उन्हीं के कलाकार को चुना कि मैं शो में उनके कलाकार को बुलाऊं, जैसे कि सुदेश बेरी साहब मेरठ में पहली बार आ रहे हैं, जिन्होंने बॉर्डर फिल्म में मथुरा दास जी का किरदार निभाया था, जिन्हें सनी देओल साहब छुट्टी के मामले में डांटते हैं।
1: जी जी,
0: वो डायलॉग भी मैं सुनाऊंगा आपको
1: जी।
0: जब वो डांटते हैं तो वो किरदार है सुदेश बेरी साहब का, जिन्होंने सनी देओल साहब के साथ कई फिल्में की हैं, जैसे कि जोशीले, हिम्मत, घायल, मातुजी सलाम और बॉर्डर। पांच फिल्मों में सनी देओल साहब के साथ में काम किया है।
1: और उनके पुराने जमाने के वो सीरियल भी बड़े फेमस रहे, बहुत अच्छे अच्छे।
0: सुराग जो सीरियल था वो दूरदर्शन पे आता था
1: जी,
0: लेकिन मुझे अभी जानकारी मिली है, सुदेश बेरी साहब ने जो जानकारी दी है कि दूरदर्शन पे सेकंड यानी कि सेकंड पार्ट
1: जी
0: अभी स्टार्ट होने वाला है, शूटिंग चल रही है।
1: अच्छा,
0: उसका पोस्टर भी लॉन्च कर दिया सुदेश बेरी साहब ने, सुराग फिर से एक बार, फिर वो सीआईडी इंस्पेक्टर बनके हम लोगों को नजर आएंगे।
1: क्या बात है।
0: तो आने वाले 30 तारीख को हम मिलेंगे सुराग के सुपरस्टार कलाकार, घायल के सनी देओल साहब के दोस्त और बॉर्डर फिल्म के मथुरा दास सुदेश बेरी साहब से, आने वाले 30 सितंबर को होटल कॉन्वे शॉपिंग मॉल मेरठ में एक अद्भुत देशभक्ति प्रोग्राम संदेश से आते हैं।

0: राजीव जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपने भी बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन जिया, एक स्ट्रगल का समय था। आपके जो पारिवारिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, जैसा आपने मुझे पहले भी बताया। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि ना बहुत सारे कलाकार हैं हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में जिनको शायद उस तरह का मौका नहीं मिल पाता, तो उस संघर्ष भरे दौर से आप किस प्रकार निकले और कैसे आपको पहली बार कामयाबी मिली, और आज क्योंकि आप दूसरे कलाकारों को भी मौका देते हैं, तो मैं चाहूंगा उनकी हौसला अफजाई के लिए आप अपने उस पुराने दौर के बारे में थोड़ा बताएं, और किस बात ने, किस सोच ने आपकी सबसे बड़ी हिम्मत बढ़ाई, और वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको टीवी के बड़े मंच तक भी पहुंचने में मदद की।
1: कृष्णा जी, कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन क्या है, मैं इसे शॉर्ट में बताऊंगा
0: जी।
1: मैं एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करता था,
0: पेट्रोल पंप पर
1: जी, तेल डालता था मैं, पेट्रोल पंप पे सेल्समैन था।
0: अच्छा,
1: मेरठ में ही हमारा पेट्रोल पंप है
0: जी,
1: मैं काम करता था मोकमपुर में, आदरणीय हरीशपाल जी का पेट्रोल पंप है, पूर्व सांसद थे मेरठ के, उस पर मैं काम करता था। तो मेरी तीन सिस्टर थी, छोटे भाई है मेरे, मम्मी पापा, तो हम एक रेंट के मकान पर रहते थे उस टाइम पे। ये मतलब मैं आपको 26 साल पुरानी बात बता रहा हूँ
0: जी।
1: तो बस वक्त बीतता गया, समय चलता रहा। डीएन कॉलेज में मैं छठी क्लास में पढ़ता था, तब मैंने नरसिम्हा मूवी देखी थी
0: जी,
1: 98 में, सनी देओल साहब की। बस वहीं से ही सनी देओल साहब को देखा, जिंदगी में कोई रोजगार नहीं था आगे बढ़ने का, सिर्फ नौकरी थी। भगवान का, उस परमेश्वर का, जीजस का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया, मेरे गले में वो आवाज दी जिस आवाज की वजह से आज मेरी रोजी रोटी चलती है।
0: यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप एक बार देओल साहब की आवाज में ही कुछ एक डायलॉग भी,
1: मैं आपको वही डायलॉग सुनाऊंगा जो मैंने कपिल शर्मा शो में भी आदरणीय गुरु सनी देओल साहब के सामने बोला था, और उसी डायलॉग से मेरी शुरुआत हुई थी। फिल्म थी नरसिम्हा, तो ये डायलॉग मेरी जिंदगी का बड़ा अहम डायलॉग है, मेरा ही नहीं, सनी देओल साहब का भी। आपने देखा होगा कपिल शर्मा शो, जब मैं इस डायलॉग को बोल रहा था तो सनी देओल साहब बड़े ध्यान से सुन रहे थे
0: जी।
1: आदरणीय ओमपुरी साहब के सामने ये डायलॉग था सनी देओल साहब का कि बस बाप जी, आज के बाद आपकी नमक की गुलामी खत्म, और अब ये जंग शुरू होती है। ये जंग इसलिए नहीं कि वो परिवार इस शहर में रहता है या नहीं, ये जंग फैसला करेगी ये शहर आपका है या इस शहर के रहने वालों का। ये जंग फैसला करेगी शहर का हर एक नौजवान, आप जैसे बापजी की कठपुतली है या इस शहर का मुकद्दर। आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए उस परिवार को इस शहर से निकालने की, और मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उस परिवार को इस शहर में रखने की। मुझे कसम है इस शहर के हर एक नौजवान की, बापजी मैं मर जाऊंगा लेकिन दूसरे नस्ल में पैदा होने नहीं दूंगा।
0: क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त।
1: हाँ, ये डायलॉग था मेरी लाइफ का, और इसी डायलॉग ने मेरी जिंदगी को सुधार दिया। पहला इंटरव्यू दैनिक जागरण में मेरा लिखला था, आदरणीय हमारे सर दिनेश दिनकर जी,
0: जी।
1: दैनिक जागरण से, और अमित जानी जैन भैया, सॉरी, उन्होंने मेरे निकाला था इंटरव्यू। तो तभी से ही, फिर उसके बाद लास्ट कपिल शर्मा शो किया, सनी देओल साहब से मुलाकात हुई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उन टीवी चैनल के अधिकारियों का जिन्होंने मुझे काम दिया, जिसमें मैं दो नाम लेना चाहूंगा
0: जी।
1: जिसमें सबसे पहला नाम लैपटॉप चैलेंज के जो मालिक थे
0: जी,
1: आदरणीय पंकज सर।
0: अच्छा,
1: भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे, उन्होंने मुझे जीवन का पहला मौका दिया था। पंकज सर प्रोड्यूसर थे लैपटॉप चैलेंज के।
0: अच्छा,
1: देवा सर कैमरामैन थे, और हमारे डायलॉग के राइटर थे राजीव धीमरा जी।
0: अच्छा,
1: राजीव धीमरा जी कपिल शर्मा शो के राइटर हैं पूरे शो के
0: जी।
1: स्टार्टिंग का जो कपिल शर्मा शो था उन्होंने पूरा किया था, और मेरे जो अजीज, मेरे जो प्रिय मित्र जिन्होंने कॉमेडी सर्कस कपिल शर्मा शो मुझे दिलाया, जयंत कुमार सिंह भैया, उनका बहुत बड़ा प्यार है, जीवन है। दूसरे जिन्होंने मुझे भी रिसेंटली अमीषा पटेल के साथ मैडनेस मचाएंगे इंडियो को हंसाएंगे शो दिया, और अभी रिसेंटली लैपटॉप सेव किया आदरणीय एनपी सर, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तीन शख्स मेरे लाइफ में ऐसे हैं, समझ लीजिए कि मैं नहीं भगवान का अवतार और फरिश्ता समझता हूँ सर।
0: ऐसे लोग जो बुरे टाइम में या हमारी मदद करते हैं, जो हौसला अफजाई करते हैं, वो यकीनन भगवान के ही दूत होते हैं, उन्हीं के भेजे होते हैं, तो और आज भी आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है सर।
1: लेकिन मैं उन लोगों का नाम भी लेना चाहूंगा कृष्णा जी, जो मेरे मेरठ शहर से थे, जिन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया था
0: जी।
1: मेरे तीन दोस्त थे जो कपिल बेदी थे, उनका कोरियोग्राफी थे बहुत अच्छे, एक एक्टर थे मेरठ के करण रोहेला, ये दोनों इस दुनिया में नहीं रहे।
0: अच्छा,
1: बहुत अच्छे कलाकार थे। मुझे बहुत दुख है, मैं आज भी ईश्वर से दुआ करता हूँ दोनों हमेशा जहाँ भी रहे खुश रहे। जोनी भाई थे मेरे, एक बहुत अच्छे मित्र थे, वो भी है, वो तो जिंदा है, शास्त्री नगर में रहते हैं वो, उनसे मैं बहुत कम मिलता हूँ, लेकिन दोनों का मुझे बहुत दुख है। और भी मेरे जीवन में बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरा फाइनेंशियली मेरी बहुत मदद की। अमर उजाला के संपादक थे राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने मेरी बहुत मदद की
0: जी।
1: राजीव खैरे थे, एक बैंक में जॉब करते थे सर, तो इन सब लोगों ने मेरी बहुत मदद की, बहुत हेल्प की, मैं इनका बहुत एहसान मंद हूँ। और आज भी मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ ये सब लोग जहां भी रहे खुश रहे। ये जो फंक्शन है, वैसे तो मैं इस फंक्शन को 5 साल से कर रहा हूँ, और जो मेरी कंपनी है सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप, 17 साल आने वाली 20 मई को 17 साल हो जाएंगे, 16 साल हो चुके हैं। तो ये जो देशभक्ति प्रोग्राम है संडे से आते हैं, इसे मैं 5 साल से कर रहा हूँ
0: जी,
1: और होटल कॉनवे में कंटिन्यू कर रहा हूँ, शॉपिंग मॉल मेरठ में। तो इस बार कुछ अलग है, नया है, क्योंकि गांधी जयंती भी है इस समय, तो आदरणीय गांधी जयंती के शुभ अवसर पर प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, संडे से आते हैं। और इसमें एक बड़ी अहम बात है कि ये फिल्म बॉर्डर के टाइटल सॉन्ग संडे से आते का ये शो है, संडे से आते हैं, और उसी फिल्म के कलाकार सुदेश बैरी साहब जिन्होंने मथुरा दास जी का किरदार निभाया था, वो इसमें मेहमान कलाकार के रूप में आ रहे हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा किरदार भी जुड़ा है अभी फिलहाल, जो मेरे प्रिय अजीत जिन्होंने मुझे कॉमेडी सर्कस महासंग्राम और कपिल शर्मा शो में काम दिया था। समझ लीजिए कि कॉमेडी सर्कस और कपिल शर्मा शो के आर्टिस्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं, पूरे शो को डायरेक्ट करते हैं वो। तो वो मेरठ में पहली बार आ रहे हैं, सुदेश बैरी साहब भी पहली बार आ रहे हैं
0: जी।
1: और मेरठ के पुलिस प्रशासन के अधिकारी लोग रहेंगे, और स्कूल्स के स्कूल बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट रहेंगे।
2: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

的什

0: और सनातन के रंग सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो के संग जय हिंद।
1: भवम भवानी सहितम नमामि
0: वास्तु कृष्णा के साथ।
2: सौ अच्छी चीजें हो जाएं, लेकिन अगर एक चीज खराब हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी पर जाता है।
3: जो आया है वो जाएगा भी।
4: जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है।
2: जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों मेरे दोस्त।
0: सुनिए सुप्रभात, जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया हर सुबह सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर मेरे यानी वास्तु कृष्णा के साथ।
2: तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते।
5: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी,

0: अत्य आधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आंख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ, लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार जूनियर सनी देओल टीवी आर्टिस्ट। और दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं आजाद हिंद रेडियो एफएम सुभारती मेरठ। दोस्तों मुझे यहां कर पता चला कि टीवी की जो बीमारी है उसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं, कुछ जानकारी देना चाहता हूं आज इस विषय में कि टीवी एक बहुत ही घातक बीमारी है, बहुत ही भयंकर बीमारी है, लेकिन इसका भी इलाज है। हमारे शहर में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उन अस्पताल में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपको फ्री दवाई भी मिलेगी, आपको फाइनेंशियली हेल्प भी होगी, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो मैं चाहता हूं कि टीवी की बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं रही, क्योंकि इसके लिए सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। तो आप लोग सरकारी अस्पताल जाएं और इस बीमारी से लड़ें, छुटकारा पाएं, क्योंकि आपको सारी सुविधाएं फ्री मिलेंगी। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग किसी को भी टीवी की समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप इसका इलाज फ्री करा सकते हैं सरकारी अस्पताल में। आजाद हिंद रेडियो सुभारती एफएम मेरठ। धन्यवाद।

हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजी वंशी, और लेकर आई हूं आज आपके लिए बहुत ही खास बातें। लेकिन प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो जानकारी है जो मैं आज आपसे साझा करने वाली हूं, वो स्मार्ट एनजीओ के सौजन्य से है, और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत सही लाभ कई, जिसमें हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपकी सेहत से रिलेटेड होती हैं। वहीं आपको हम समय समय पर जानकारी देते हैं कि आप किस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, या उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो गर्भावस्था में हैं इस वक्त, और किस तरीके से वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं और अपने खाने पीने की ध्यान रख सकती हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि परिवार किस तरीके से उस महिला की मदद कर सकता है। देखिए, ये सफर बड़ा ही कठिन होता है, तो ऐसे में परिवार की भागीदारी और उनकी जिम्मेदारी काफी मायने रखती है। जैसा कि आपको पता है कि गर्भावस्था के दौरान महिला के स्वास्थ्य का ख्याल रखना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसी दौरान शरीर में कई तरीके के बदलाव आते हैं, जिसमें से एक आम समस्या होती है खून की कमी, जिसे हम एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। और अक्सर इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हम जाने अनजाने ऐसे ही जाने देते हैं, हमें लगता है क्योंकि गर्भावस्था में ऐसा होता ही है तो ये एक आम बात है। लेकिन दोस्तों, कई बार सिम्टम्स आम होते हुए भी हमें समझ नहीं आता कि वो किस ओर इशारा कर रही हैं। तो चलिए कुछ इस बारे में आज आपसे जानकारी साझा कर देती हूँ। देखो, गर्भावस्था के दौरान जो शरीर में खून की कमी आती है वो इसलिए आती है क्योंकि प्लाज्मा की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक, और जिससे हीमोग्लोबिन को बनाए रखने के लिए अधिक आयरन की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को। और आप मानो कि अगर शरीर को पर्याप्त आयरन ही नहीं मिलेगा तो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो अपने आप कम होता चला जाता है, और इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो आम होकर भी आम नहीं होते, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। इस अवस्था में एक महिला को बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है, कमजोरी उसे महसूस हो सकती है, उसके चेहरे पर नाखूनों या आंखों के नीचे पीलापन आपको देखने को मिल सकता है, उसका सांस फूल सकता है, या उसको बार बार चक्कर आने की समस्या हो सकती है, सर दर्द उसे हो सकता है, और हाथ पांव उसके ठंडे पड़ सकते हैं। और ये वही सिम्टम्स हैं, ये वही संकेत हैं।

जिन्हें हम अक्सर यूं ही समझकर कि ऐसा तो होता ही है ये समझकर हम टाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सिम्टम्स को टालना नहीं है। जब भी ये लक्षण आपको दिखाई दे, एक बार जरूर अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर एक बार जरूर अपनी जांच कराएं, क्योंकि जांच करा लेंगे तो आपके मन का जो वहम है वो भी निकल आएगा और साथ ही साथ जो आपकी स्वस्थ होने की अपडेट है वो भी आप तक पहुँच जाएगी। देखो, खून की कमी जो है वो आपके खान पान से होती है। अगर आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, अपनी सही से देखभाल रखेंगी, तो खून की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको बस ध्यान देना है अपने आहार पर, और आपका जो आहार होना चाहिए वो होना चाहिए आयरन से भरपूर, जिसमें कि आप पालक, मेथी, चुकंदर और बाकी की जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो जरूर खाएं। साथ ही साथ जो फल होते हैं, खास तौर से अनार, खजूर, मुनक्खा और गुड़, ये भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और जो आपकी रसोई घर में दालें मौजूद होती हैं वो तो प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होती हैं, तो रोजाना नहीं तो आप एक दिन छोड़ करके दाल जरूर खाएं। काला चना आप खा सकती हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और राजमा भी बहुत अच्छा रहता है, आयरन से भरपूर रहता है। वहीं आपको बता दूं कि विटामिन सी भी बड़ा ही जरूरी हो जाता है ऐसे टाइम में, तो आयरन को शरीर में अच्छी तरीके से सोखने के लिए विटामिन सी की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए आप नींबू खा सकते हैं, आंवला, संतरा और टमाटर, इसको आप अपने जो खाने की थाली है उसमें जरूर शामिल करें। यानी कि जो खट्टी चीजें होती हैं, जो तासीर जिनका नेचुरली ही खट्टा होता है, आप उसको जरूर खाएं। और आयरन की गोलियां जो डॉक्टर देते हैं उसको आप सही समय पर लें, फॉलिक एसिड सही पर लें और नियमित रूप से उनका सेवन करें। ऐसे ना करें कि आज हमने खा ली, कल को हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये लापरवाही होती है और इसके जो परिणाम होते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते, और बाद में आपको लगता है कि हमने तो दवाइयाँ खाई थी, लेकिन आप एक शब्द भूल जाते हैं कि क्या आपने नियमित रूप से वो दवाई खाई भी थी या आपने छोटी सी लापरवाही बरती थी अपनी सेहत के साथ। तो अपनी सेहत के साथ कोई भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। इसी के साथ एक बात आपको जरूर बता दूं कि जो महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं और आयरन की गोलियां वो खा रही हैं, उसको आप बिल्कुल भी चाय के साथ ना लें, कॉफी के साथ भी बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आयरन को आपके शरीर में सोखने से रोक लेते हैं। इसे या तो आप सादे पानी से ले सकते हैं या नींबू पानी के साथ आप इसको लेंगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। और किस तरीके से आप गर्भावस्था में अपना देख रेख कर सकती हैं और क्या इसके खास तरीके हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आपको बात बता देती हूँ। आपको सबसे पहले तो नियमित जांच करानी है, यानी कि डॉक्टर से समय समय पर आपको जांच करानी है, ANC विजिट करानी है, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच आपको नियमित रूप से करानी है। साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही जरूरी अल्ट्रासाउंड कराने हैं, अपनी मनमर्जी से कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है। अपनी जो डाइट है वो आपको बैलेंस लेनी है। प्रोटीन के लिए आप दूध, पनीर, दही, दालें, अगर अंडा खाती हैं तो अंडा भी आप खा सकती हैं। कैल्शियम के लिए, क्योंकि आपके बच्चे के विकास के लिए भी आपको कैल्शियम चाहिए होगा, तो वो आपको दूध और डेयरी उत्पाद से ही मिलता है, तो इसलिए वो आप जरूर खाएं। इसी के साथ दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर आपको पीना है। और दोस्तों, एक खास बात और हो जाती है, मैं आपको बता दूं कि रात में कम से कम आपको 8 घंटे की नींद लेना जरूरी हो जाता है, और दिन भर में भी आपको समय निकाल करके 1 से 2 घंटे आराम जरूर करना है, क्योंकि जितना आप आराम करेंगी उतना ज्यादा आपके जो शरीर है वो अच्छा महसूस करेगा। और सोते समय एक चीज आपको बड़ी ध्यान में रखनी है, बाईं करवट यानी के लेफ्ट साइड होकर के आपको सोना है। इस पोजिशन को सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे बच्चे तक रक्त संचार अच्छा रहता है। और ये नहीं करना है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बिल्कुल रेस्ट मोड पर चले जाएं। लाइट एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, हल्का व्यायाम आपको जरूर करना है। डॉक्टर की सलाह लेकर के आप वॉक यानी के टहल सकती हैं या प्राणायाम भी कर सकती हैं। भारी सामान उठने से आपको बचना है और बहुत ज्यादा जो झुकने वाले काम होते हैं उनसे भी बचना है। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ बातें मैं समय समय पर आपके लिए लेकर आऊंगी, और आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में जो जानकारी आपसे साझा की जा रही है वो स्मार्ट NGO के सौजन्य से आपको कराई जा रही है उपलब्ध, और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत सही लाभ कई। अंत में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। देखो, अगर गर्भवती महिला के पेट में तेज दर्द या ब्लीडिंग होती है, यानी कि खून आना

शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी जैसा आपको महसूस हो रहा है, ऐसे में भी जरूर एक बार अपने डॉक्टर से बात करें। चेहरे या हाथ पैरों पर अचानक से बहुत ज्यादा सूजन आ गई है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से जरूर बात करनी है। और बच्चे की हलचल अगर कम महसूस आपको हो रही है, इस बारे में भी आप जरूर डॉक्टर से बात करें, या आप अपने आसपास की आशा या आंगनवाड़ी वाली दीदी से भी बात कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं फिर से लौटूंगी ऐसी ही कुछ सेहत भरी बातों के साथ। अभी दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, बाय बाय। ऐसे ही अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। और अब आप सुनेंगे एक खास प्रस्तुति जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ, और ये कार्यक्रम है सेहत सही लाभ कई। मध्यम और गंभीर एनीमिया कब और कैसे IVFCM मदद कर सकता है, आज का टॉपिक यही है। नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ सेहत सही लाभ कई के इस अगले अंक में। मुझे तो आप जानते हैं, मेरा नाम है वास्तु कृष्ण। पिछले कार्यक्रमों में हमने इसी विषय में बात की है कि गर्भावस्था में खून की कमी यानी एनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA MMS और पौष्टिक भोजन के बारे में आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आज का सवाल है, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया निकल आए तो क्या करना चाहिए? क्या केवल कमजोरी दूर करना ही लक्ष्य है, या माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है? और सबसे महत्वपूर्ण, IVFCM क्या है और किन गर्भवती महिलाओं के लिए डॉक्टर उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद हैं सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी। तो सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी, दोनों का मैं स्वागत करता हूँ
1: जी। धन्यवाद धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम
0: जी। सेहतिया सिंह जी, बताइए जरा, शुरुआत एक आसान सवाल से करते हैं। पिछले कार्यक्रम में आपने हल्के, मध्यम और गंभीर एनीमिया का जिक्र किया था, एक बार फिर से सरल भाषा में समझा दीजिए।
1: जरूर बतावेंगे जी। जब खून की जांच में हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का एनीमिया कहते हैं, और इसके बाद आगे बात करें तो 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो इसे मध्यम एनीमिया कहते हैं, और 7 ग्राम से कम हो तो यह गंभीर एनीमिया माना जावे है।
0: यानी जितना कम हीमोग्लोबिन उतनी ही ज्यादा चिंता।
1: हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इसका असर गर्भवती महिला और उनके गर्भ में पल रहे बच्चों दोनों पर पड़े है।
0: तो क्या मध्यम और गंभीर एनीमिया इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए?
1: बिल्कुल ना जी, समय पर पहचान और इसका इलाज घना जरूरी है।
0: दोस्तों, अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, और ये कहानी हमको हमारी टीकन देवी जी सुनाएंगी।
2: देखो, जो आज मैं कहानी सुनाने वाली हूँ ना आप सभी को
0: जी,
2: वो असल में सुनीता की है। अब मैं आपको बताऊँ, सुनीता का चल रहा था 7वां महीना।
0: अच्छा जी।
2: कुछ दिनों से उसे बार बार चक्कर आवे थे।
0: अच्छा।
2: तो थोड़ी दूर जब भी चलक रही तो उसे सांस फूलने की बीमारी सी हो गई।
0: अच्छा।
2: उसे टेंशन हो गई, घर का काम भी मुश्किल लगने लगा।
0: अच्छा।
2: जने जने कितना काम हो। घर वाले सोचते थे कि ये तो गर्भावस्था में होता ही है, तो ज्यादा कुछ टेंशन की बात ना है। लेकिन एक ANC जांच के दौरान खून की जांच की गई, और रिपोर्ट में पता क्या चला?
0: क्या चला?
2: उसे मध्यम एनीमिया था।
0: ओ माय गॉड, यानी फिर क्या हुआ उसके बाद?
2: फिर क्या, स्वास्थ्य केंद्र में उसकी स्थिति को समझा गया, आगे सलाह भी दी गई उसे, और परिवार को भी समझाया गया कि ये केवल कमजोरी ना है बल्कि उसे इलाज की जरूरत है।
0: सेहतिया सिंह जी, अगर किसी गर्भवती महिला में मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया जाता है तो डॉक्टर को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, या वो देते हैं ध्यान?
1: देखो, ऐसा होगा जी, डॉक्टर पहले स्थिति की गंभीरता को देखेंगे। अगर एनीमिया आयरन की कमी से है तो उपचार उसी हिसाब से तय होगा। हल्के एनीमिया के मामलों में डॉक्टर इलाज के लिए आयरन की गोली दे सकते हैं।
0: अच्छा,
1: यू हो जाए।
0: यानी हर गर्भवती महिला को IVFCM नहीं दिया जाता?
1: जी बिल्कुल, IVFCM हर किसी के लिए नहीं है, ये एक चिकित्सीय निर्णय है जो जांच और मूल्यांकन के बाद ही लिया जा सके है।
0: ऐसा है ना सेहतिया जी, अब बहुत सारे दोस्त हमारे सुन रहे हैं लेकिन उन सबको नहीं पता कि ये IVFCM होता क्या है, तो मैं चाहता हूँ कि आसान भाषा में हमारे तमाम मेरठ के श्रोताओं को, हमारे दोस्तों को जरा समझा दीजिए कि ये IVFCM होता क्या है।
1: बिल्कुल बतावेंगे जी, और आसान भाषा में समझावेंगे, थारी वाली भाषा में, हमारी वाली भाषा में। देखो, कई बार लोग सोचते हैं कि IVFCM कोई अलग दवा है या कोई जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरल भाषा में समझें तो ये शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने का एक तरीका है, जिसमें आयरन नस के रास्ते दिया जाता है। जब किसी गर्भवती महिला में जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पाया जावे है, या डॉक्टर को लगे है कि तेजी से सुधार जरूरी है, तब यो वाला विकल्प चुना जावे, इसका विचार करा जावे इस पे।
0: अच्छा, यानी ये एक सामान्य कमजोरी का इलाज नहीं है?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, यो बहुत महत्वपूर्ण बात है। केवल थकान महसूस होने से किसी को IVFCM नहीं दिया जाता। पहले जांच होती है, खून की रिपोर्ट देखी जाती है, महिला की स्थिति को समझा जाता है, उसके बाद डॉक्टर निर्णय लेते हैं।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि IVFCM हमेशा जांच पर आधारित उपचार होता है।
1: बिल्कुल सही कहा जी आपने, यही कारण है हम बार बार कहते हैं पहले जांच, फिर सलाह, फिर उपचार।
0: और क्या ये सही है कि IVFCM अपेक्षाकृत कम समय में दिया जा सकता है?
1: हाँ जी, स्वास्थ्य सुविधा पर डॉक्टर और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में यो दिया जाता है। इसके बाद कुछ समय तक महिला को देखा भी जावे है और कुछ स्थिति सामान्य रहे तब आगे की कार्यवाही भी होवे। फिर
0: क्या ये अस्पताल में भर्ती होकर ही कराया जा सकता है?
1: ना जी, ऐसा जरूरी तो ना है, लेकिन यो हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में स्वास्थ्य सुविधाओं पर ही किया जा सके।
0: यानी आपका मतलब यह है कहने का कि अपने मन से उपचार करवाना ठीक नहीं, जैसे कि अक्सर हम लोगों की आदत होती है ना कि अपने खुद से मन से डॉक्टर बन जाते हैं और कोई भी इलाज करवा लिया, कोई भी ट्रीटमेंट ले लिया।
1: ना जी ना, ऐसा बिल्कुल ना करना। सही रास्ता हमेशा जांच और डॉक्टर की सलाह और स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख में हो तो वही बढ़िया।
0: टीकन देवी जी आप क्या कहेंगी?
2: देखो मैं भी एक बात जोड़ना चाहूँ, कई बार क्या होता है परिवार डर जाता है कि ड्रिप लगेगी तो बीमारी बहुत बड़ी हो सके, लेकिन ऐसा जरूरी ना है। IVFCM जो होता है वो एक प्रभावी उपचार विकल्प के रूप में समझा जा सके, लेकिन ये केवल डॉक्टर की सलाह और निगरानी में ही दिया जाना चाहिए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। सेहतिया जी एक बात और, कई श्रोता हमारे लिसनर्स ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर आखिर IVFCM पर विचार ही क्यों करते हैं?
1: इसका भी बता दें मैं जी।
0: जी
1: देखो बात यो है, क्योंकि मध्यम या गंभीर एनीमिया केवल कमजोरी का विषय ना है, यो माँ और बच्चों दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सके, माँ और बच्चे दोनों के लिए तो हो गया है यो। इसलिए जब डॉक्टर को लगे है कि आयरन की कमी को जल्दी और प्रभावी तरीके से ठीक करना जरूरी है, तब वो IVFCM जैसे विकल्प पे विचार कर सकते हैं।
2: और बिल्कुल सही कहा आपने सेहतिया जी। और मैं एक बात परिवारों से भी कहना चाहूँ
0: जी
2: कि अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह देवे तो उसे लेकर डरे ना, अफवाहों में ना पड़े, पहले पूरी जानकारी लें, सवाल पूछें जो भी आपके मन में आ रहे, और स्वास्थ्य कर्मी की बात को भी समझने की कोशिश करें।
0: जी सेहतिया जी, क्या IVFCM का उद्देश्य केवल गर्भवती महिला की कमजोरी को दूर करना होता है?
1: ना जी ऐसा तो ना है, इसका बड़ा उद्देश्य जो है वो माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणाम में योगदान देना है, मतलब उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। और जब एनीमिया का समय पर इलाज होता है तो गर्भावस्था को सुरक्षित रखने में इससे बढ़िया मदद मिल जा।
0: यानी फायदा केवल माँ को नहीं बच्चे को भी हो सकता है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इलाज में परिवार की क्या भूमिका है? टीकन जी आप बताएं इसके बारे में।
2: जी बिल्कुल बताऊंगी। देखो परिवार की बहुत बड़ी भूमिका, पहला गर्भवती महिला की कमजोरी को गंभीरता से ले, दूसरा स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से महिला को लेके भी जाएं।
0: अच्छा,
2: उसमें बिल्कुल देरी ना करें।
0: ठीक है।
2: और तीसरा जांच में साथ जाएं, उसे अकेले ना भेजें।
0: अच्छा।
2: चौथी बात मैं बताऊं आपको, गोली समय पर हो और सही तरीके से उसकी महिला की मदद करें।
0: ठीक है।
2: और इससे अगली बात ये कि किसी परेशानी की स्थिति अगर हो रही है तो स्वास्थ्य कर्मी से बात

0: जरूर करें। और आगे बताऊं, अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे रहा है ना, तो उसे स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में मदद भी करें।
1: अच्छा।
0: क्योंकि इसमें कमजोरी भी आ जा जब एनीमिया हो जा। और सातवां बताऊं आपको,
1: बताओ,
0: घर में अच्छा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करावे उसे।
1: अच्छा।
0: और आठवां, महिला को उसकी स्वास्थ्य स्थिति के लिए दोष न दें बार बार।
1: सचमुच एनीमिया का इलाज केवल स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी है। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जाता है तो क्या आगे भी निगरानी होती है सेहतिया जी?
2: बिल्कुल होवे जी, निगरानी होनी चाहिए, फॉलोअप होना चाहिए। देखो अंग्रेजी का शब्द आ गया मेरे मुंह से
1: जी।
2: आगे बात करूं तो महिला की पुनः जांच होनी चाहिए, आवश्यकता होने पर आगे की सलाह दी जाएगी उसे। ठीक है, पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी में होती है, ये सबसे बढ़िया बात है।
1: यानी उपचार के बाद भी संपर्क बनाए रखना बेहद जरूरी होता है।
2: बिल्कुल जी बिल्कुल, संपर्क बनाए रखो जी।
1: चलिए दोस्तों, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले IVFCM से जुड़ी कुछ आम धारणाओं के बारे में बात करते हैं। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जा रहा है तो उसकी हालत बहुत खराब होगी। सिहतिया सिंह जी, आप क्या कहेंगे?
2: गलत। IVFCM देने का निर्णय जांच और चिकित्सीय आवश्यकता के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, केवल ड्रिप लगने का मतलब यो ना है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है।
1: यानी IVFCM हर गर्भवती महिला को लेना चाहिए। टीकन जी, आप क्या कहेंगे?
0: ना ना, ऐसा भी ना है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। IVFCM जो होता है वो हर महिला के लिए नहीं होता, ये केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जावे जहां डॉक्टर को उसकी आवश्यकता दिखाई दे।
1: अगर IVFCM लग गया तो आगे किसी जांच या फॉलोअप की जरूरत नहीं रहती?
2: क्यों ना रहती जी, ये तो गलत बात है। फॉलोअप तो जरूर रखना चाहिए, निगरानी जरूर रखनी चाहिए।
1: अच्छा।
2: उपचार के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र की सलाह के अनुसार जांच और निगरानी की जाती है, ऐसा नहीं होता।
1: बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं क्योंकि घर पर ही डॉक्टर बुला लेते हैं, घर पर ही सारी चीजें कर ले, तो क्या IVFCM घर पर भी लगवाया जा सकता है?
0: देखो मैं बताऊं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ये हमेशा स्वास्थ्य सुविधा पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में ही दिया जावे, घर पर ये बिल्कुल नहीं होने का।
1: यानी अगर किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को IVFCM दिया गया था तो मुझे भी वही उपचार लेना चाहिए सेहतिया जी?
2: ना, गलत है यो, ऐसा भी ना है। हर गर्भवती महिला की स्थिति अलग अलग हुए है, उपचार हमेशा उसकी जांच और डॉक्टर की सलाह के अनुसार तय होता है।
1: वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जानकारी आप दोनों ने यहाँ पर दी। बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया जी और टीकन जी। इसी के साथ ये प्रोग्राम दोस्तों समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं, पर चलते चलते आज की चर्चा से तीन महत्वपूर्ण बातें याद रखने योग्य हैं। पहली, गर्भावस्था में कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने को नजरअंदाज मत कीजिए। दूसरी, नियमित ANC जांच और खून की जांच करवाइए। तीसरी, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया मिलता है तो स्वास्थ्य केंद्र की सलाह का पालन जरूर करना चाहिए। कुछ स्थितियों में IVFCM जैसे उपचार पर विचार कर सकते हैं, क्यों टीकन जी?
0: और मेरी तरफ से एक और संदेश मैं देना चाहूँ, सारी बात आपकी बढ़िया लगी मुझे
1: जी,
0: लेकिन एक बात ये भी है कि खून की कमी को कभी भी लंबा ना खींचना चाहिए, चाहे गर्भावस्था हो या ना हो। लेकिन गर्भावस्था अगर चल रही है तो समय पर जांच करवाना बड़ा जरूरी, स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए और गर्भवती महिला को परिवार का पूरा सहयोग मिलना चाहिए।
2: देखो जी, मैं तो एक बात कहूँ, यो बात याद रखने लायक है, समय पर पहचान और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणाम संभव हो सके हैं, इसलिए जांच करवाओ और देखभाल बढ़िया सी रखो जी।
1: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और दोस्तों, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रसव के बाद की अवस्था यानी PNC के दौरान एनीमिया पर, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी माँ का स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सुनते रहिए सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
7: सेहत

जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। सेहत सही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति फिर से आपका स्वागत करता हूँ।

0: की प्रस्तुति।
1: जी हाँ, सेहत सही लाभ कई में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। दोस्तों, आज इस खास कार्यक्रम में, स्मार्ट एनजीओ की इस खास प्रस्तुति में, हम बात करने वाले हैं आजकल में होने वाले बुखार, लगातार वायरल, ये सब क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथियों, आजकल मौसम में ना बदलाव हो रहे हैं, लोगों को बहुत तेज बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, कमजोरी, ठंड लगने जैसी शिकायतें हो रही हैं। ऐसे में एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और कुछ समय बाद दूसरा भी उसी बुखार की चपेट में आ जाता है। जिस परिवार में किसी एक बच्चे या व्यक्ति को यह बुखार होता है, फिर पूरे परिवार को हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर यह बुखार किस वजह से हो सकता है? क्या हर बुखार एक जैसा होता है और क्या हम अपने परिवार को इससे बचा सकते हैं? सबसे पहले एक जरूरी बात, हर बुखार डेंगू नहीं होता। हर बुखार को सिर्फ वायरल कहकर छोड़ देना भी सही नहीं होता। बुखार के पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। मौसम और क्षेत्र के अनुसार डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा कई तरह के वायरल और श्वसन संक्रमण भी बुखार का कारण बन सकते हैं। इसीलिए बुखार होने पर सबसे जरूरी है लक्षणों को समझना, जरूरत पड़ने पर समय पर जांच कराना। अब बात करते हैं डेंगू की। सबसे पहले, डेंगू संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होता है। अचानक तेज बुखार, तेज सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, भूख कम लगना, जी मिचलाना, शरीर पर दाने जैसे लक्षण हो जाते हैं। लेकिन डेंगू में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खतरे के संकेतों को पहचानना सबसे जरूरी है। पेट में तेज दर्द हो, लगातार उल्टी हो, नाक या मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाए, खून में उल्टी, मतलब खून की उल्टी होना शुरू हो जाए और काला मल आना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा सुस्ती आनी शुरू हो जाए, बेचैनी हो, सांस लेने में परेशानी हो, मरीजों की हालत तेजी से बिगड़ रही हो, तो तुरंत आपको अस्पताल पहुंचना होगा।

0: जी हाँ, सेहत से ही लाभ के कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आजकल होने वाले बुखार के कारण, लक्षण और उनसे बचाव का तरीका। सब थोड़ी देर पहले हमने बात की कि डेंगू क्या होता है, अब बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया भी मच्छर से फैलने वाला रोग होता है। इसमें बुखार में जो है ठंड लगती है, कपकपी होती है, सिर दर्द, उल्टी, शरीर में कमजोरी होती है। कई बार इसके लक्षण दूसरी बीमारियों जैसे वायरल बुखार से मिलते जुलते होते हैं। इसीलिए केवल लक्षण के आधार पर खुद से बीमारी तय करना ठीक नहीं होता। और एक बीमारी होती है चिकनगुनिया। इसमें अचानक बुखार के साथ साथ जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, कभी कभी शरीर पर दाने भी हो जाते हैं, और ये भी संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। सवाल है कि जब बीमारी अलग अलग है तो बचाव कैसे करें। पहला और सबसे बड़ा कदम, मच्छरों को पैदा होने ही मत दीजिए। साफ सफाई रखिए घर में, घर के आसपास पानी मत जमा होने दीजिए, गंदगी मत जमा होने दीजिए। कूलर, गमले, छत पर पड़े हुए पुराने टायर, डिब्बे या कोई ऐसी चीज जहां पानी भरा हुआ है वहां पर आप पानी मत भरने दीजिए। ये ऐसी ही जगहों पर पनपते हैं। नियमित रूप से सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, जहां रुका हुआ पानी वहां मच्छर के पनपने का खतरा रहता है। और मच्छर ये दिन में भी काटते हैं। मच्छरों से बचने के लिए पूरे कपड़े पहनिए, जरूरत के अनुसार मच्छरदानी का उपयोग कीजिए और घर की खिड़की दरवाजों पर जाली का इस्तेमाल कीजिए। सोते समय मच्छरदानी उपयोग जरूरी है। चिकनगुनिया और डेंगू के फैलने वाले जो मच्छर होते हैं, जो ये काटते हैं ना, ये जो मच्छर होते हैं ये रात में नहीं दिन में भी काटते रहते हैं, तो आपके घर में मच्छर ना हो इसका इंतजाम आप कीजिए। अब एक और जरूरी बात, अगर घर में किसी को बुखार है और उसके बाद परिवार के दूसरे लोगों को भी बुखार हो रहा है तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा।
1: स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है

जी हाँ दोस्तों, यह है स्मार्ट एनजीओ की खास प्रस्तुति सेहत सही लाभ। कई मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज हम बात कर रहे हैं आजकल होने वाले बुखार के बारे में, वायरल के बारे में, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया की बात मैंने आपको बताई। और मैं एक और बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि घर में अगर किसी को बुखार है और उसके बाद परिवार में एक से दूसरे को भी बुखार हो रहा है तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। कई संक्रामक रोग व्यक्ति से व्यक्ति तक फैल सकते हैं, जबकि डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसे रोग मच्छर महत्वपूर्ण, मतलब आप समझे, चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया ये मच्छर के काटने से होते हैं, लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होता है ये व्यक्ति से व्यक्ति को फैल सकता है। इसीलिए बीमारी के फैलने का तरीका बीमारी के अनुसार अलग हो सकता है। अगर बुखार के साथ खांसी, गले में खराश, सांस में जुड़ी कोई समस्या आती है तो संक्रमित व्यक्ति के आसपास सावधानी आपको रखनी है। मत जाइए उसके पास, या थोड़ी सी सावधानी रखनी है। साफ सफाई का ध्यान रखना है, हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार मास्क का भी उपयोग करना है। लगातार खांसी बन जाए, बुखार बन जाए, शरीर में दर्द बन जाए, डॉक्टर के पास जाइए, खून की जांच करवाइए। आजकल इतनी तरह के बुखार हैं पता नहीं चलता किसको कब कौन सा बुखार हो गया है, और अगर एक दूसरे से फैलना शुरू हो जाए तो आपने देखा होगा कि एक परिवार के सारे लोगों को हो जाता है। इसीलिए यह संक्रमण एक दूसरे से ना फैले इसका इंतजाम हमें तुरंत करना चाहिए।

आजकल होने वाले बुखार, मच्छर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, इन सब की बात कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर आपका स्वागत है। यह खास प्रस्तुति सेहत सही लाभ कई, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। मैं हूं वास्तु कृष्णा। दोस्तों, जब भी बुखार हो, पहले तो अपने आप डॉक्टर मत बनिए, खुद से पैरासिटामोल या कोई और ऐसी दवाई जो आजकल दुनिया भर की आती है, ये सब खुद से मत खरीद कर खाइए। अगर एक दिन से ज्यादा बुखार को, बदन दर्द को, जुकाम खांसी इत्यादि को हो गया है, डॉक्टर के पास तुरंत चले जाइए। जरूरत पड़ने पर अपने खून की जांच करवाइए, पता लगाइए कि बुखार कौन सा है, तभी उसका पूरा ट्रीटमेंट आप लेंगे। अगर बुखार के साथ खांसी, गले में खराश, सांस से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, तो संक्रमित व्यक्ति के आसपास आने जाने में सावधानी रखें, उनका तौलिया अलग करें, खांसने के टाइम पर उनको मास्क दीजिए, उनका कपड़ा अलग रखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना पूरे परिवार को ये फीवर हो सकता है। आपने देखा ही होगा, परिवार में किसी एक व्यक्ति को होता है, फिर पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है। बुखार में खुद एंटीबायोटिक या दूसरी दवाएं मत शुरू कीजिए। डेंगू की आशंका में डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी एस्पिरिन या एनएसएआईडी की दवाई, ये जो दर्द निवारक दवाइयां होती हैं, मेडिकल स्टोर से जाकर कुछ भी खरीद कर खा लेना, ये मत कीजिए। दुनिया भर की जो आजकल पैरासिटामोल या अन्य प्रकार की जो दवाई आती है, मत लीजिए खुद से, ये बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। बुखार को हल्के में नहीं लेना है, लापरवाही नहीं करनी है। बुखार तेज हो, लगातार हो, मरीज बहुत कमजोर हो रहा हो, पानी ना पी रहा हो, बार बार उल्टी हो रही हो, सांस लेने में परेशानी, बेहोशी या असामान्य व्यवहार हो, खून आने जैसे लक्षण दिखाई दे, हालात तेजी से खराब हो रहे हो, तो तुरंत अस्पताल जाइए। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में, सरकारी अस्पताल में भी जा सकते हैं, अगर आपका मन है तो प्राइवेट।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ

0: 9639222293 पर या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज और हाजिर हो चुका हूं यहां पर आपसे बातें करने के लिए। भाई जब भी मैं यहां पर आता हूं एक अच्छे गानों की प्ले

टेस्ट अपने साथ लेकर आता हूँ और लेकर आता हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपके नॉलेज को थोड़ा बढ़ाएं और आप तक कुछ अच्छी बात पहुँचाएं। बाकी मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि आप भी हमारा साथ दे सकते हैं, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी अपडेट, कोई अच्छा फैक्ट अगर आप पहुँचाना चाहें तो हम तक पहुँचा सकते हैं। 9639012111 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर होता है, मैसेज भी आप यहां पर कर सकते हैं और इसी के साथ ही साथ जा सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर भी और वहां पर जाकर इनबॉक्स में हमें मैसेज भेज सकते हैं। बाकी फिलहाल आपको जाना कहीं नहीं है, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

कमाई कितनी भी हो बचत जरूरी है। छोटी छोटी बचत ही बुरे वक्त का सहारा बनती है, इसीलिए अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा आज ही बचाना शुरू करें। आज ही इन्वेस्ट करें, कल को सुरक्षित करें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज। एक अच्छी वाली बात, जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। मतलब सिंपल और साफ सा है। कई बार हमें हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में हार मिल रही होती है, जिनके बाद हम इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सोचने लगते हैं कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ करने के लिए बाकी है ही नहीं, हमें ट्राई करना ही बंद कर देना चाहिए। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए और एक नई शुरुआत का इंतजार करना चाहिए। इनफैक्ट नई शुरुआत करनी चाहिए, दोबारा कोशिश करनी चाहिए। वेल, ये तो हुई हमारी अच्छी वाली बात। बाकी आप सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

ट्रैफिक जैम का गुस्सा अब गानों में निकालो। रेड लाइट हो या लंबा रास्ता, हम हैं आपके बेस्ट ट्रैवल पार्टनर। आज ही डाउनलोड करें आजाद हिंद रेडियो ऐप और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

चिटे सूट थे अभी अभी आपने सुना और गीता जेलदार की वॉइस में ट्रैक था। अभी तक भी ये गाना कुछ रील्स में रिक्रिएट करके शेयर किया जाता है, लोग पसंद करते हैं अभी इसे भी। और एक नया टॉपिक मैं शुरू करने की सोच रहा था कि आज एक अच्छे टॉपिक के साथ आपसे बात की जाए, उस पर चर्चा की जाए अच्छे से। और टॉपिक डिस्क्लोज करूंगा मैं थोड़े समय बाद, लेकिन अभी फिलहाल के मौसम पर तो यार बात कर लें। मतलब यार ये बारिश हो गई है और इनफैक्ट मेरठ में, नोएडा में, गाज़ियाबाद में, ज़्यादातर सभी ज़िलों में जो है बच्चों की छुट्टियां आज हो गई है ना। ये नोटिस आया डीएम साहब की ओर से सभी ज़िलों के कि कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे तेज बारिश के कारण। और ये कल नोटिस देर रात सभी पेरेंट्स के पास पहुंच गए थे और कुछ पेरेंट्स जो है चेक नहीं कर पाए व्हाट्सएप वगैरह को, तो कुछ लेकर भी पहुंचे तो उन्हें वहां से वापस लेकर आना पड़ा अपने बच्चे को, क्योंकि आज स्कूल बंद रहे है ना, ये कारण रहा। और बारिश, भाई सब बारिश होने लगी है और हल्की हल्की वो सर्दी वाली जो फील आती है ना, वो हल्की हल्की सी महसूस हो रही है। आपको महसूस हो रही है या नहीं मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं यहाँ पर हूँ, आप भी बस यहीं पर रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और अभी चाय पकौड़े की तैयारी हो चुकी है नहीं, वो भी मुझे आप बता सकते हैं। एंड सैटरडे की इवनिंग है, कल वीक ऑफ रहता है ज़्यादातर का, तो जिनका ऑफ है वो तो बड़े खुश रहते हैं और जिनको जाना होता है वो टेंशन में होते हैं कि भाई आज यार इतनी बारिश हो रही है और आज भी

भागते घर पहुंचेंगे, तबीयत खराब हो गई तो कल कैसे जाएंगे। लीव की बड़ी समस्या होती है ना, तो छुट्टी नहीं मिलती है उसकी भी समस्या होती है। बाकी जिनका ऑफ है उनके तो मज़े हैं, अपने आराम से सो के उठेंगे, कुछ ना कुछ प्लान कर रखा होगा, वो प्लान पर शायद बारिश वाला ये पानी फिर जाए, लेकिन लेकिन लेकिन रेस्ट घर पे रहकर किया जा सकता है। बाकी कुछ कहना हो बताना हो, मैं यहाँ पर हूँ, आप बता सकते हैं, कह सकते हैं, आ सकते हैं सोशल हैंडल्स पर आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से, हम आपको मिल जाते हैं। और बारिश हो ही रही है अभी, अपने यहाँ पर तो हो ही रही है, अच्छी खासी बारिश हो रही है, तो बारिश से रिलेट करता एक ट्रैक आपको सुना देते हैं। कोई अच्छा ट्रैक आप भी सजेस्ट करना चाहें तो कीजिएगा, और सुनते रहिए गूंज आपके अपने आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

थमके बरस अभी अभी आपने सुना है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज। शो है गूंज, जिसे आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। थोड़ा टेम्परेचर की भी बात कर लें तो 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने की उम्मीद है, और ये टेम्परेचर ये इशारा कर रहा है धीरे धीरे कि हल्की हल्की सी आपको सर्दी महसूस होने वाली है। और आज तो पूरे दिन बादल छाए रहे एंड रात भर बारिश पड़ने की उम्मीद है, और बताया ये जा रहा है कि कल सुबह से थोड़ा और बाद यानी कि दोपहर तक बारिश जो है रुक सकती है, मौसम धीरे धीरे साफ होने लग सकता है और हल्की हल्की सी धूप भी आपको दिखने लगेगी। बाकी सोमवार को मौसम पूरे तरीके से साफ रहेगा, कल रविवार बीत जाने के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बाकी यार मौसम है, बदल सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा आपको, बेशक ये लगे कि ठीक रहने वाला है मौसम, तो आप क्या कर सकते हैं ऐसा सोचते हुए भी कि ठीक रहेगा, उसके लिए भी एक आपके पास ऑप्शन है कि अचानक अगर बिगड़ जाए मौसम ठीक रहते रहने के बाद भी, तो अपने पास आप एक रेनकोट कैरी कर सकते हैं, अम्ब्रेला रख सकते हैं ताकि आप बच सकें। क्योंकि ये बारिश ऐसी बारिश है, इसमें भीगना बहुत बेकार हो जाएगा, आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है। क्योंकि ये बारिश वो बारिश नहीं है जिससे इंजॉय किया जा सके, जिसमें भीगा जा सके, ठीक है। ये बारिश के आगमन

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: हर मुस्कुराहट के पीछे खुशी नहीं होती, अगर मन उदास है तो छुपाइए मत, बात कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। अगर डिप्रेशन है तो उसे दूर भगाइए, अपनों से जुड़िए। इसी संदेश के साथ सुनती रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूँ आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज और अभी एकदम लाइव आपसे मेरी बातें हो रही हैं। अपने स्टूडियो में बैठा हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ। अच्छा, अभी हम बात कर सकते हैं बारिश के मौसम के बारे में। हाँ जी, बारिश जो होती है कभी भी आ जाती है ना, और बारिश के मौसम में कुछ बातें जो हैं वो ध्यान रखने वाली होती हैं। देखिए, एक बात तो ये, जब कहीं रास्ते में आप जा रहे हो और कहीं पर पानी भरा हुआ हो बारिश के मौसम में, तो वहां पर थोड़ा संभल कर जाएं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि पानी के बीच में कहीं पर गड्ढा है या कुछ और है जिससे आपको चोट लग सकती है। तो आप किनारे से होकर जा सकते हैं या वहां से जा सकते हैं जहां से आपको रास्ता दिख रहा हो कि यहां पर पानी भरा हुआ नहीं है, हल्का हल्का रास्ता दिख रहा है, तो वहां से आप जा सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ एक बात ये, अक्सर क्या होता है कि बारिश से बचने के लिए हम किसी पेड़ का सहारा ले लेते हैं, जो हमारे आसपास कोई पेड़ खड़ा हुआ होता है ना, उसका सहारा ले लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि बारिश के मौसम में पेड़ जो होते हैं वो हल्के से कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि उस समय में हो सकता है कि हवा भी चल रही हो, तो हवा से पेड़ के गिरने का डर होता है, और अगर आप उसका सहारा लेकर खड़े हैं तो आप भी उसकी चपेट में आ सकते हैं जब वो गिरेगा। तो ऐसे भी थोड़ा बचें। बाकी आप अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं हमारे साथ तो बिल्कुल साझा कर सकते हैं। बारिश से जुड़ा हुआ आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम के नाम से हम आपको इंस्टा एफबी दोनों जगह पर मिल जाते हैं, आप वहां जा सकते हैं और हमें बता सकते हैं। फिलहाल सुनते रहिए ऐसे ही आपके अपने रेडियो स्टेशन को, यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम को।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज और अभी यहां अपने स्टूडियो में बैठा हूं, एकदम लाइव आपसे बातें कर रहा हूं। अभी थोड़े टाइम पहले आपको मैं बता रहा था बारिश के मौसम में किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तो मेरे पास तुरंत मैसेज आता है रेवती जी का, जो कह रही हैं कि सर आपको एमपी मंदसौर से मैं सुन रही हूं ऐप के माध्यम से, और हमारे यहाँ सर मौसम बिल्कुल ठीक है, बारिश नहीं हो रही है, बट पता नहीं आज आप क्यों बारिश के बारे में बातें कर रहे हैं। तो भाई बारिश के बारे में बात मैं बस इसलिए कर रहा हूं कि बारिश के मौसम में आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब आपकी चिंता मुझे रहती है तो मैं सोचता हूं कि क्यों ना अपने दोस्तों तक कुछ बात पहुंचाई जाए, उनको समझाया जाए, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे इसी के साथ ही साथ ये भी पूछ रहा था कुछ टाइम पहले कि बारिश से जुड़ी हुई कोई बात, बारिश से जुड़ा हुआ कोई किस्सा अगर आपके पास है तो वो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे मैसेज करती हैं रसीन, जो कह रही हैं कि सर एक बार का आपको किस्सा बताती हूँ। मुझे अपनी फ्रेंड के बर्थडे में जाना था, उसने पार्टी रखी हुई थी तो मुझे वहां जाना था। मैं पूरे तरीके से तैयार होकर घर से निकली थी और आधे रास्ते ही पहुंची थी कि तुरंत बारिश हो गई और मेरी सारी ड्रेस खराब हो गई। फिर मुझे वापस जाना पड़ा और कुछ और पहनकर जाना पड़ा, मतलब जो ड्रेस मैंने सोची थी वो मैं पहनकर जा नहीं पाई। भाई ये बड़ा बुरा हुआ था आपके साथ। चलिए इसी के बाद अगला मैसेज पढ़ते हैं। अगला मैसेज जो है ये हमें भेजा हुआ है जॉनी ने, जो कह रहे हैं कि सर मेरे साथ का किस्सा तो एक बार का ये है कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था और मेरी पहली जॉब का इंटरव्यू था। आराम से मैं जा रहा था, पूरी तरीके से अच्छे से तैयार हुआ था और जैसे ही बाहर पहुंचा, सड़क पर पहुंचा ऑटो पकड़ने के लिए, तो तुरंत बारिश हो गई। लेकिन उस टाइम एक अच्छी बात ये रही थी

कि मैं अम्ब्रेला लेकर निकला हुआ था। मुझे पता था कि बारिश आज हो सकती है, तो मैं अम्ब्रेला लेकर निकला था और मैंने अम्ब्रेला खोला और मैं बच गया। मेरे कपड़े खराब नहीं हुए, हल्के से जूते खराब हो गए थे बस। चलिए भाई, अच्छा है कि आप बच गए, आपने दिमाग लगाया अपना। वैसे ऐसा करना चाहिए, जब बारिश का मौसम आपको लग रहा हो कि आज बारिश हो सकती है, तो अपने साथ अम्ब्रेला जरूर कैरी करें या रेनकोट कैरी करें। चलिए अभी फिलहाल क्या करते हैं, बारिश के बारे में इतनी बात हो गई है तो बारिश से जुड़ा हुआ एक गाना आपको सुना देते हैं, क्या कहते हो, प्ले करें? चलिए प्ले करते हैं और आप सुनिए आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
2: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स इंग्लिश, एमए हिंदी।

0: MA English। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

शहर आपका है, घर भी आपका है, कचरा डस्टबिन में डालें, सड़क पर नहीं। स्वच्छता सिर्फ आदत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए मिलकर अपने शहर को चमकाते हैं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

बैक टू बैक आप बारिशों वाले गाने सुन रहे हैं और कैसे लग रहे हैं गाने मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो ज़रूर कह सकते हैं, बता सकते हैं। कहने बताने के लिए आप हमारे सोशल हैंडल्स पर भी आ सकते हैं। वैसे लाइव आपसे बातें हो रही हैं, समय की बात करूं तो ठीक 6:54 और 30 सेकंड हो चुके हैं मेरे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। एंड मैं आपसे ये भी कह रहा था कि भाई अब बारिश है तो अपने आप को थोड़ा आपको बचाना है। और ये है कि कार से जा रहे हैं इस वक्त और रेडियो में आप सुन रहे हैं हमें, अपनी कार में रेडियो चला रखा है आपने, हमें चला रखा है, हमें सुन रहे हैं। तो आपसे कहना बस यही है कि थोड़ा बस जब आप गुजरें, जहाँ से भी गुजरें, कहीं पर आपको दिख रहा है कि पानी वगैरह है और आसपास खड़े कुछ लोग हैं, तो थोड़ा बस वहाँ से सेफ्टी के साथ प्लीज़ निकालिएगा। दूसरे के कपड़े ख़राब ना हो, इस चीज़ का भी ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। और अभी कहीं घर पर हैं, कहीं इम्पोर्टेंट जाना है, कुछ लेने जाना है ना, तो बस यही है कि अब कई बार ऐसा होता है कहीं जगह पर पानी भरा होता है तो वहाँ पर थोड़ा बच के चलना होता है। ये बातें कुछ समय पहले वैसे मैं कर भी रहा था आपसे बारिश सेफ्टी को लेके। एंड कुछ कहना हो बताना हो तो ज़रूर कहिए बताइए। आप कहने बताने के लिए हमारे सोशल हैंडल्स पर भी आ सकते हैं। फिलहाल

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। इसीलिए हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए पहनिए। स्पीड पर लगाम, सुरक्षा को सलाम। सुरक्षित रहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

सजदे अभी अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी किल दिल, और यहाँ पर लाइव आपसे मेरी बातें हो रही है। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज, और मुझे आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। शो चल रहा है गूंज, और टाइम की बात करूं तो ठीक 7:16 और 17 सेकंड हो चुके हैं मेरे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। बारिश से रिलेटेड सॉन्ग्स आप सुन रहे हैं, बारिश से रिलेटेड बात हम कर रहे हैं, और इसी बीच बारिश से रिलेटेड ही एक सॉन्ग सुनने की और फरमाइश आ चुकी है। आपने काउंट किया कितनी बार बारिश हो चुका है? क्या करें यार, बारिश इतनी हो रही है। तो अमन की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है और सुनना चाह रहे हैं बारिश बन जाना। तो आइए इनकी रिक्वेस्ट को पूरा कर देते हैं बिना देर किए, और सुनते हैं इनकी रिक्वेस्ट पर बारिश बन जाना। बाकी आप भी अपनी कोई रिक्वेस्ट, अपनी कोई फरमाइश हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा सकते हैं अपने किसी भी फेवरेट ट्रैक को सुनने के लिए। फिलहाल जाना तो कहीं भी नहीं है, एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ सिर्फ आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: दफ्तर की थकान और दिन भर की भागदौड़, अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स करने का और अच्छी नॉलेजेबल बातें सुनने का, वो भी प्यारे गीतों के साथ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हमारे शहर की धड़कन, हमारी अपनी आवाज, आपके हर संगीत की फरमाइश को हम पूरा करते हैं, इसीलिए कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

मलिक की वॉइस में इस ट्रैक को हम सुनने जा रहे हैं एंड इस ट्रैक रिक्वेस्ट हमसे की है गिरीश ने, तो आइए सुनते हैं गिरीश की रिक्वेस्ट पर ये ट्रैक।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता। बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए। अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने, इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: एक प्लास्टिक की थैली को खत्म होने में सालों लगते हैं, पर ये हमारी धरती को पल भर में बीमार कर देती है। इसीलिए कोशिश करें और हमेशा कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। प्रकृति बचाएं, प्लास्टिक हटाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना पेंदास आरशे पंकज। अच्छा, हम जब भी यहां पर आते हैं तो आपसे ढेर सारी बातें कर ही लेते हैं, लेकिन अगर आप हमसे बातें करना चाहें, हमें कोई सजेशन देना चाहें, हम तक कोई अपनी बात पहुंचाना चाहें या अपने किसी फेवरेट ट्रैक को सुनना चाहें तो आप ये कैसे कर सकते हैं? ये कुछ ही को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको अब मैं बता ही देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना होता है कि आपको कनेक्ट होना होता है हमसे हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से। हम फेसबुक यानी कि मेटा पर भी हैं, और हाँ, इसके साथ ही साथ हम इंस्टाग्राम पर भी हैं। वहां पर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से। और हमारे स्टूडियो का भी नंबर होता है, जो कि होता है 9639012111। इस पर भी आप कॉल या मैसेज करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी कोई रिक्वेस्ट, अपनी कोई बात हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किशोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।